0: इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। CBSE परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदनप्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्तसमयप्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनाङ्कं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्यछात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारितसमये एव स्व आवेदनप्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपराम सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्री पुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% GDP विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की

0: कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत श्री आकाश गुप्ता से मनोरमा नदी की स्वच्छता के संबंध में बातचीत, और शाम 5:10 पर सुनेगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत सरपंच रामजी भगत से बातचीत। रात्रि 8:00 स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्य भारती, और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम के अंतर्गत ऋषिकेश गारगोडा का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस गान पाठ से अगला प्रसंग। दिन में 12:30 पर अर्पण कार्यक्रम में आज चर्चा होगी जीवन की सबसे बड़ी सीख मानवता। साथ ही इसी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी बच्चों को चहुमुखी विकास का वातावरण प्रदान करती मॉडर्न बाल वाटिका विषय पर श्री रमेश रावत से दीपा जोशी की क्षेत्र संकलित बातचीत। अपराह्न 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हरीश चंद्र जोशी की वार्ता, विषय होगा व्यावसायिक बॉयलर पालन। शाम 5

5:20 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी विकसित भारत, रोजगार गारंटी, आजीविका मिशन और स्वच्छता की ही सेवा विषयों पर। शाम 7:00 किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बातें का विषय होगा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कृषि वानिकी। इसी कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत जल प्रबंधन पर जानकारी। सुबह 8:30 पर और 11:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग होगा सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दिन में 1:15 पर और रात 8:00 सबरस। संध्या 6:41 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत। कुमाऊनी लोकगीत सुनेगा लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर। शैल स्वर कार्यक्रम में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत का प्रसारण समय होता है दिन में 2:00। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे गीत निर्झर कार्यक्रम में सुबह 9:20 पर। सुरबहार कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। सुबह 11:00 होगा सैनिकों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम। दिन में 12:00 आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। 2:45 पर होगा एक ही फनकार कार्यक्रम। अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। शाम 7:40 पर सुनेगा फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजत रश्मिया। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओ, आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत श्री आकाश गुप्ता से मनोरमा नदी की स्वच्छता के संबंध में बातचीत। और शाम 5:10 पर सुनेगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत सरपंच रामजी भगत से बातचीत। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान पाठ से भाग 116।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से भाग 116। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और साथी संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आम जन से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टिहरी के चंबा विकासखंड में आजीविका और स्वरोजगार परियोजनाओं का निरीक्षण किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में 25 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आगामी सोमवार से बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उनका संकलन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है। BLO का प्रशिक्षण और गणना फॉर्मों की छपाई का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। 8 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। साथ ही प्राप्त फॉर्मों को BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज्ड कर अपलोड भी किया जाएगा। डॉक्टर जोगदंडे ने बताया कि यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO उसके घर पर 3 बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
2: जो हमारे मैपिंग हुआ है उसके अनुसार हमारे राज्य में 79,60,000 वोटर्स जो वर्तमान में निर्वाचन नामावली में दर्ज जिनके नाम है उन सभी के गणना प्रपत्र का छपाई पूर्ण हो चुका है और उसमें से हमारा 88% व्यक्तियों का मैपिंग भी पूरा हो चुका है। अभी तक हमारे 8,81,000 लोग मैपिंग से छूट गया है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आपका मैपिंग हो गया है अथवा आपका मैपिंग से छूट गया है, दोनों प्रकार के व्यक्ति अगर फॉर्म भर के दे देते हैं तो उनका नाम ड्राफ्ट सूची में आ सकता है। उसमें कोई रोक नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका मैपिंग नहीं भी हुआ है आप फिर भी अपना फॉर्म को सही रूप में भरकर जमा कर सकते हैं, तो 100% फॉर्म जमा होने की संभावना आज बनी हुई है।
1: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता ECI नेट ऐप के माध्यम से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भर कर अपलोड कर सकते हैं। वहीं बुक ए कॉल विद BLO सुविधा के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र के BLO से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से हिना आजमी।
0: इससे पहले डॉक्टर जोगदंडी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने सभी दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने और अभियान में सहयोग करने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल नैनीताल जिले के भीमताल में झील सौंदर्यकरण अभियान में भाग लेते हुए पौधरोपण किया। इस अभियान के तहत भीमताल झील के किनारे पर बोगनवेलिया के पौधे लगाए जाएंगे जिससे झील क्षेत्र में सौंदर्यकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आम जन से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और जीवन शैली का प्रकृति से गहरा संबंध रहा है और पर्यावरण संरक्षण हमारी परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने, जल स्रोतों का संरक्षण, नदियों और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का भी आह्वान किया। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भीमताल नगर पालिका को 5 नए कूड़ा वाहनों की सौगात दी। भीमताल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमताल पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ की झीलें और प्राकृतिक सुंदरता बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं और व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नगर पालिका को नए कूड़ा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि कूड़े के संग्रहण और निस्तारण का कार्य बेहतर ढंग से किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ कूड़े का समय पर निस्तारण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नगर निकायों को स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए कूड़ा वाहनों के साथ अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करा रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सके।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा विकासखंड में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने विभिन्न आजीविका और स्वरोजगार से जुड़ी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि रीप और अन्य आजीविका संवर्धन योजनाओं के तहत संचालित गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार विस्तार को बढ़ावा देने के साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में गुणवत्ता

को का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दिखोल गांव में री परियोजना और आईएफएडी के सहयोग से संचालित हिमालयन भोजनालय फूड कार्ट का निरीक्षण किया तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान महिलाओं ने स्थानीय व्यंजनों के निर्माण और विपणन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद मुख्य सचिव ने नागड़ी में निर्माणाधीन मिनी फिश प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से जुड़े अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं। मुख्य सचिव ने परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में वर्चुअल माध्यम से 25 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से होने वाले 3 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 2 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार काशीपुर के समग्र विकास और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से 8 प्रमुख चौराहों के निर्माण और सौंदर्यकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। पहले चरण में नानकाना साहिब और महाराणा प्रताप चौक के सौंदर्यकरण कार्यों का शिलान्यास किया गया है। सड़क परिवहन को मजबूती देने के लिए 16 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से काशीपुर रामनगर मार्ग के मरम्मत और निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा काशीपुर स्टेडियम में निर्मित ओपन जिम तथा उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में बने प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का भी लोकार्पण किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन लॉन्च किया। इस दौरान श्री पुरी ने घोषणा की कि E85 ईंधन की कीमत सामान्य E20 मिश्रित ईंधन से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने E85 के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को घटाकर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल आधारित ईंधन किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जन से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टिहरी के चंबा विकास खंड में आजीविका और स्वरोजगार परियोजनाओं का निरीक्षण किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में 25 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूरन चंद्र के गाए कुमावनी लोकगीत।

0: आईएसआई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान आईएसआई का ही है।
0: जब से आपने आईएसआई के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। आईएसआई के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: लोकमंजरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पूरन चंद्र के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

अभी आपने सुना पूरन चंद्र का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत। आइए लोकमंजरी कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं इन्हीं का गाया एक और लोकगीत।

पूरन चंद्र के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल

0: देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा, क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
5: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है

0: कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़

0: भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia.

अभी आप सुन रहे थे गोपाल चंद्र जोशी का बांसुरी पर बजाया राग अल्हैया तिलावल। आपके साथ तबले पर संगत की थी आनंद सिंह बिष्ट ने। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाली विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना

0: चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेडी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च तक शुरू की गई है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच मल्लनपुरम नई चंडीगढ़ में महाराज यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आप?
2: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी थी। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पी रहे थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
2: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
2: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
2: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया

0: 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है, तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े

0: दूं की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाशी कार्यक्रम गीत निर्जर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के गीत निर्जर कार्यक्रम में। आज के इस सफ़र में आपके हम सफ़र, मैं हूं पूजा, कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता। दोस्तों, जब जिंदगी का सफ़र मोहब्बत के रंगों से सजा हुआ होता है तो ज़िंदगी की गाड़ी हसीन रास्तों से गुजरने लगती है। मंजिल मिले या न मिले इस बात से बेखबर, दो प्यार करने वाले चले जाते हैं मंजिल की तलाश में। ज़िंदगी की राह में मोहब्बत को लेकर आने वाले हम सफ़र से बस यही कहा जा सकता है।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर का संगीत। इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से M फारूख कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला पप्पू, शेख समा परवीन, अलकमन बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य। नरहन इस्टेट फुटानी चौक से लल्लन मिश्रा, उदय कांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। चंडीगढ़ से इसी गीत की फरमाइश की थी सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
4: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
4: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
3: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa. कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में सूरज फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। मुंदी चक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी। सदर बाज़ार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। मेहानगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर राही, श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर। बदलापुर मुंबई से हैं प्रणीता गुहाणकर, सिद्धांत गुहाणकर, टुकटुक गुहाणकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गुहाणकर, श्वेता, सुमित गुहाणकर, कुमारी, ध्वनि गुहाणकर परी और इनके परिवार के सभी सदस्य। पोपलघट से माया, शिवांश, चंद्रकला देवीदास और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश की है गुजरात से अजीत भावसार, प्रमीला भावसार, भावेश कुमार भावसार, जैमिन भावसार, राकेश कुमार भावसार और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर।

0: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं 20 साल बाद फिल्म से। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, आवाज़ और संगीत है हेमंत कुमार का। इस गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष श्रीवास, विवेक, बेबी आयुषी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित, सोनू और मानस राज। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। इसी गीत की फरमाइश की है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और इनके परिवार के सभी सदस्य। सुदामा नगर

खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। भूण चौराहा बुलंदशहर से हैं पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने।

0: ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, पेश है हलचल फिल्म से उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है विद्यासागर ने। इस गीत की फरमाइश की है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। लमगड़ा अल्मोड़ा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं आशु, प्राची और जीनी। मकेड़ी अल्मोड़ा से हैं जीवन, गंगा, लक्ष्मी, रूपाली, तन्मय, प्रार्थना, दिया और तेजस। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हिमरता और डिम्पल। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा और हर्ष आहूजा। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, डॉक्टर अपेक्षा, अमीन दीवान। नागपुर यूनिवर्सिटी तिवसा से प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, प्रज्वला मेश्राम और व्याख्या। इसी गीत की फरमाइश की है गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने।

हलचल फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए पेश है कुमार सानू की आवाज़ में दीवाना फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। सुनना चाहते हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश की है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ये हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इसी गीत को सुनना चाहा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना ने। इसी गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। गिरगांव ज़िला हिंगोली से रमेश जी मारोतराव पांचाल और इनके परिवार के सभी सदस्य। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन।

आज के गीत नेचर कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है हसरत जयपुरी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। सुनना चाहा है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा ने। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन, देवाश्री और कीर्ति भानु। रायगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दीपेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और इनके परिवार के सभी सदस्य। दुविधा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार और हैप्पी। गाजीपुर से हैं अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति राय, नवनील और इनके परिवार के सभी सदस्य। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और इनके परिवार के सभी सदस्य। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनप्रीत, मनविंदर सिंह पांधा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल, हेतल, राजेश और रेशमा साहू। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोमल सिक्का, डुग्गू, कोयल, भाविका और इनके परिवार के सभी सदस्य। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। जाखौद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक। बिहार से वलीउल्ला अंसारी और असमानास। पदमपुर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात

0: साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राजेश जौहरी के लिखे हुए इस गीत के साथ मिताली मुखर्जी की आवाज में।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
3: Summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
5: ये हैं हरिहरन, कलाम है इसरार अंसारी का।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे नंदा सुनंदा कार्यक्रम से अब ड्रॉप आउट बालिकाओं को जोड़ते हुए उन्हें भी शिक्षा के अवसर दिए जाएंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में सर्वे कर ड्रॉप आउट बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित करने और स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं को एक बार फिर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी बालिका की शिक्षा आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का प्रयास होगा कि प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए। श्री चौहान ने कहा कि जरूरतमंद छात्राओं को शासकीय योजनाओं, छात्रवृत्तियों और अन्य उपलब्ध संसाधनों से लाभान्वित कर उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित कारलीगाड़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत, पुनर्वास और संरक्षण कार्यों को तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रशासन ने आपदा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, मलबा हटाने और जोखिम कम करने के लिए मशीनरी, मैन पावर और अन्य संसाधनों में बढ़ोतरी की है। क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में जिलाधिकारी ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री के साथ कालीगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने अगले 15 दिनों के भीतर क्षेत्र से मलबा हटाने, नदी के चैनलाइजेशन और पुनर्वास संबंधी कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मलबा हटाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मशीनें लगाई जाएंगी। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा नदी के चैनलाइजेशन के लिए अतिरिक्त मशीनें तैनात की गई हैं, जिससे राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी आई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिगंबर सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की और भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में लाइटवेट विश्व चैंपियन बनने पर उन्हें बधाई दी। श्री धामी ने कहा कि दिगंबर सिंह रावत ने अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। दिगंबर सिंह रावत ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई MFN18 प्रतियोगिता में पहले ही राउंड में तकनीकी नॉकआउट के माध्यम से शानदार जीत दर्ज कर विश्व खिताब अपने नाम किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में फ्लोरेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन लॉन्च किया। इस दौरान श्री पुरी ने घोषणा की कि E85 ईंधन की कीमत सामान्य E20 मिश्रित ईंधन से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने E85 के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को भी घटाकर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल आधारित ईंधन

किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भीमताल नगर पालिका को 5 नए कूड़ा वाहनों की सौगात दी। भीमताल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमताल पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ की झीलें और प्राकृतिक सुंदरता बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं और व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नगर पालिका को नए कूड़ा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कूड़े के संग्रहण और निस्तारण का कार्य बेहतर ढंग से किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ कूड़े का समय पर निस्तारण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नगर निकायों को स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए कूड़ा वाहनों के साथ अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करा रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। सुरबहार कार्यक्रम में एक ही कलाकार के अंतर्गत आज बात करते हैं पार्श्व गायिका शमशाद बेगम की। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ पूजा, कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, शमशाद बेगम एक भारतीय गायिका थीं जो हिंदी सिनेमा उद्योग में आरंभिक पार्श्व गायिका के रूप में आई थीं। शमशाद बेगम एक बहुमुखी कलाकार थीं जिन्होंने हिंदी के अलावा बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल एवं पंजाबी भाषा में लगभग 6000 से भी अधिक गीत गाए। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में बहार फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: श्रोताओ, शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल साल 1919 में पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। वे अपनी युवावस्था से ही KL सहगल की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। फिल्में देखना और गीत सुनना उन्हें बहुत पसंद था। फिल्में देखने का शौक उन्हें इस कदर था कि उन्होंने फिल्म देवदास लगभग 14 बार देखी थी। शमशाद बेगम का विवाह गणपत राय बट्टू के साथ हुआ था। शमशाद बेगम के गाए हुए गीत आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: श्रोताओ, हिंदी सिनेमा के आरंभिक दौर में शमशाद बेगम की खनकती और सुरीली आवाज़ ने एक बहुत बड़ी संख्या में अपने प्रशंसकों की भीड़ तैयार कर ली थी। हिंदी फिल्मों के कई सुपरहिट गीत जैसे कभी आर कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, बूझ मेरा क्या नाम रे, ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक ले, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और मेरे पिया गए रंगों जैसे सुपर हिट गीतों को गाकर शमशाद बेगम प्रसिद्धि की बुलंदियों पर जा पहुंची। तो आइए सुनते हैं इन चितलकर और शमशाद बेगम की आवाज़ों में पतंगा फिल्म का ये गीत। गीत के रचनाकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
3: का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

श्रुता शमशाद बेगम को साल 2009 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। शमशाद बेगम भारतीय हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिनको संगीत प्रेमी कभी नहीं भुला सकते हैं। शमशाद बेगम ने अपने करियर में ऐसे गीतों को गाया था जो श्रोताओं के जहन में अब तक तरोताज़ा हैं।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में नया दौर फिल्म का ये गीत। आइए कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं इन्हीं आवाज़ों में किस्मत फिल्म का गीत। SH बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है OP नैयर ने। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों का दिल जीतने वाली मशहूर पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हुआ। शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म जगत से भले ही

SH बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है OP नैयर ने। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों का दिल जीतने वाली मशहूर पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हुआ। शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म जगत से भले ही कई वर्ष पहले दूरियां बना ली थी, किंतु अपने पूरे करियर में बेशुमार और प्रसिद्ध गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी।

श्रोताओं, सुरबहार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे एक ही कलाकार के अंतर्गत पार्श्वगायिका शमशाद बेगम की। अब इस कार्यक्रम से पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुर बहार। अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

आगे भाई यह कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति तुम्बिन फिल्म का नगमा अभिजीत और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में। गीत के बोल फैज अनवर के हैं और तर्ज बनाई है निखिल विनय ने।

0: Make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: फौजी भैया ये कार्यक्रम आगे सुनते हैं। जावेद अख्तर का लिखा, शंकर एहसान और लॉय का संगीत बद्ध किया, अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया गीत। फिल्म का नाम है दिल चाहता है।

0: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TLC applies.
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति समीर का लिखा गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है मां।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम के समापन में लीजिए अब पेश है सोनू निगम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में प्यार इश्क और मोहब्बत फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, मौसिकार विजू शाह।

अभिश्रोता फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राग मियां की तोड़ी में उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों का सहनाई वादन, विलंबित धुन एक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।

100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत मेरी पसंद।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मियां की तोड़ी। और अब इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: दिस जून मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल।
5: प्रेजेंटिंग द बोट बलेनो, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी।
4: Equipped with features like 360 degree camera, head up display and safety through 6 airbags.
5: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
4: Also get amazing benefits up to ₹50,000, valid till 30th June.
5: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply. Next.

सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी रोशनी वालिया का सस्नेह अभिवादन। श्रोताओं, आज का मेरी पसंद कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता सुनील दत्त पर। लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त का जन्म आज ही के दिन यानी 6 जून सन 1929 में हुआ। यूं तो उनके माता पिता ने उनका नाम रखा बलराज दत्त, पर जैसे ही ये फिल्मों में आए इन्हें नाम मिला सुनील दत्त। आपका जन्म जलंधर में के खुर्द में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब बंटवारा हुआ था। बंटवारे की चपेट में सुनील दत्त साहब भी आए और वे पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए। बंटवारे की उथल पुथल में दत्त साहब का परिवार दिल्ली आ पहुंचा और उसके बाद ये चले गए लखनऊ। लखनऊ में अमीनाबाद की गलियों में काफ़ी वक्त बिताने के बाद इन्होंने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की और ग्रेजुएशन करने के लिए ये चले आए मुंबई, जहां ये एक तरफ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक नौकरी पकड़ ली। आगे क्या हुआ दोस्तों, ये बातें हम आपके साथ अभी आगे साझा करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं सुनील दत्त अभिनीत ये गीत, जिसे हमने लिया है लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में फिल्म छाया से।

दोस्तों दत्त साहब एक रेडियो अनाउंसर भी रहे। उन्होंने रेडियो सिलोन के लिए कई कार्यक्रम पेश किए। अपने रेडियो करियर के दौरान ही इन्होंने नरगिस को इंटरव्यू किया था। तब ये दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि आगे जाकर ये मिस्टर और मिसेज दत्त बन जाएंगे।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, जब सुनील दत्त और नरगिस की शादी हुई तब नरगिस पहले से ही सुपरस्टार थी और सुनील दत्त धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सुनील दत्त एक ऐसे अभिनेता रहे जो हर तरह की भूमिका निभा लेते थे, चाहे वो कॉमेडी हो या फिर सीरियस इमोशनल रोल। 50 और 60 के दशक में सुनील दत्त साहब की कई फिल्में हिट रहीं, जैसे साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान और पड़ोसन। तो आप सभी को याद होगी ना, ये वो वक्त था जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा की जोड़ी दत्त साहब के साथ खूब जमी। चाहे वो फिल्म गुमराह हो, हमराज रही हो या फिर मल्टी स्टारर वक्त। बहरहाल, इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं खानदान फिल्म का ये सदाबहार गीत।

0: श्रद्धा 1968 में दत्त साहब फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गए। फिल्म बनाई मन कामी, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई सोमदत्त को ब्रेक दिया। दोस्तों, ये वही फिल्म है जिसमें एक्टर विनोद खन्ना को भी बतौर विलन ब्रेक मिला था। दत्त साहब ने फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन को भी चांस दिया था, लेकिन उनकी ये फिल्म कोई खास व्यवसाय नहीं कर पाई और वे काफ़ी परेशान रहने लगे। तब लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे करेक्टर रोल्स प्ले क्यों नहीं करते, लेकिन सुनील दत्त झुके नहीं। फिर उनकी दूसरी पारी शुरू हुई, प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन, जानी दुश्मन और शान जैसी फिल्मों में सुनील दत्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके चाहने वाले उन्हें अब भी सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। तो आइए इसी क्रम में अब आपको लिए चलते हैं फिल्म जंजीर के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।
1: आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए,

प्रथम वर्ष 1984 में दत्त साहब के व्यक्तित्व का एक नया आयाम नजर आया जब वे राजनीति में प्रवेश कर गए और बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। सुनील साहब एक तरफ राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे तो दूसरी तरफ फिल्मों में भी बने रहे, जैसे 90 के दशक में आई फिल्म परंपरा और क्षत्रिय फिल्मों में वे नजर आए। 1995 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया। और दोस्तों ये बात भी गौर करने लायक है कि उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया और फिर उसके बाद सन 2003 में संजू की ही फिल्म मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी, हर एक सीन भावनाओं से भरा था। दत्त साहब को फिल्म खानदान और फिल्म मुझे जीने दो के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया था। दत्त साहब ने नेता और अभिनेता दोनों ही रूपों में जनसाधारण की सेवा की। 25 मई सन 2005 को वे हार्ट अटैक के कारण इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनील दत्त साहब का नाम हमेशा

श्रोताओ, ये थी आज की मेरी पसंद अभिनेता सुनील दत्त के नाम। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे थे, उन्हें हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और अब इसी के साथ अपनी रेडियो सखी रोशनी को दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाज़त। अगले अंक में कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

मेरी पसंद अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम

एपड़ कार्यक्रम सुनी सब श्रोतागणियन के मैं दीपा जोशी नमस्कार स्वागत है आप सब लोगों का आज के एपड़ कार्यक्रम में। निगड़ कुछ बातचीत आप लोगों ने अगर करूँ कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ और दगड़ मैं करूँ आप लोगों भरपूर मनोरंजन तो कार्यक्रम में पछा तक हमारा दगड़ बढ़ी रहा। निगड़ियों मानवता एक यश सदगुण छू जो मानवीयता के देखूँ यह मन की जो छू ऊपर उपकारी पढ़ूँ और नैतिकता है जोड़ जाँच एक दूसरे प्रति मानवीय प्रेम और करुणा भी भीतर देखें। मानवता का मतलब यही छोड़ गुड़ियों कि भगवान ने हमन के जो ले क्षमताएँ दे रखी हमको जो ताकत दे रखी उन हम सही उपयोग करो। मानवता का असल सार यही छो कि हम हर कह कहीं प्रेम और करुणा देखो एक मदद करो। मानवता जो छो वो सांस्कृतिक धार्मिक या सामाजिक आर्थिक सीमाओं है हट भेद उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमन के तोनक बजाय एकजुट करें मिलजुल बेर एक बट्टी भी ऋण सीखें। मानवता में दगड़ियों करुणा दया और दुसरुख बोझ के कम करने की सच्ची इच्छा है हमारे भीतर बट्टी हमारे चाहत हैं कि अगर कोई दुखी छो हम एक दुख के दूर करो। मानवता जैक भीतर है उमन की मैं दया भाव और उदारता है। दगड़ियों दुनिया भर में प्रेम शांति और संतुलनक दगड़ दगड़े मन की जन्म के सार्थक करने के लिए हर मन की मैं मानवीय गुणों को बहुत जरूरी छू। जब यह मानवता हमारे भीतर हो तब हम सच मानव में एक मन की छा। मानवता यानी दूसरों प्रति सहानुभूति करुणा और आदरक भाव धरण जो मन की एक यश जो मन की एक यश विशेषता है जो उसे दूसरों को मदद करना के लिए प्रेरित करें दूसरों को दुख पीड़ के समझण और विक समाधान में मदद वही मन के करूँ चाहे भीतर मानवता हो। अंतर के छू कि आज वक़्त में एक दोहरा है कहने कोई मतलब है नहीं रू लेकिन यह भाव नहीं हो चाहे जब हम एक दोहरा की मदद करूँ तो तब हमारे भीतर मानवता जो छू हो सब है पहली एक भर मन की भरण हमारे जीवन के सार्थक बढ़ेगी तब मन की मिलजुल भी प्रेमक दगड़ रूँ और सब जीवों की दगड़ मानवीय गुण जिसकी दया हो गई परोपकार हो गई प्रेम भाव सेवा भाव प्रेम करुणा व्यवहार करूँ। देखो मानवता वही छो जो कोई ले जाति धर्म और एक व्यक्ति विशेष कहीं नहीं देखन बल्कि वो समान रूपल सबनक दगड़ प्रेम भल व्यवहार और सबनक लीजिए भल सोच धरो। जीवनक सब है ठूल सीख मानवता ही छो जो हर मन की मैं हूँ बहुत जरूरी छो तब सब जगन थे खुशहाली हुई और हम तो यही चाहते बड़े कि हर तरफ खुशहाली हो हमारे सब दगड़ी छन जो श्रोता दगड़ी छन वो हमेशा खुश रहो और हमारे कार्यक्रम के सुनते रहो। तो आगे कर लो आप लोगों को मनोरंजन और सुनो जो गीत।

0: निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं,
2: विश्वास जगाएं।
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
4: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: और देख रहे हो आप लोगों ने जी, हम एक क्षेत्र संकलित बातचीत लिए आ रहे हैं। बच्चों को चहुमुखी विकास का वातावरण प्रदान करती मॉडर्न बाल वाटिका विषय पर हमने बात करी श्री रमेश रावत जी द्वारा। तो सुनो यो क्षेत्र संकलित बातचीत। आज का कार्यक्रम में हमारे द्वारा जोल रही श्री रमेश सिंह रावत जी, कोऑर्डिनेटर बाल वाटिका डाइट अल्मोड़ा। तो बहुत बहुत स्वागत छो हमारे कार्यक्रम अपन में।
6: धन्यवाद आपको और ये कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
5: सर जैसे कि आप मॉडल बाल वाटिका में कोऑर्डिनेटर छा, जो हमारे नवनिहाल छन उन सर्वांगीण विकास जी बाल वाटिका एक अहम भूमिका है। मॉडल बाल वाटिका के बारे में आप उसे जान जानू।
6: हमारे डाइट में ECC विभाग या हम कुनू की प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा के अंतर्गत हम वहाँ मॉडल बाल वाटिका स्थापना कही जा रहे। मॉडल बाल वाटिका स्थापना सत्र 2024-25 में SCRT निर्देशन में हम वहाँ करी गए। मॉडल बाल वाटिका स्थापना 3 वर्ष / 8 वर्ष नंतनाथ सर्वांगीण विकास हेतु करी जा रहे, जैमे नंतनाथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उन सामाजिक विकास के ध्यान में रखी जा रहा, या हम नंतनाथ सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखनू।
5: ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि नंतिनो चहुमुखी विकास के लिए जी यह बाल वाटिका मॉडर्न बाल वाटिका काम करने लग रहे। तो आप तो जानना चाहो कि कैसे अपने यहाँ सर्वांगीण विकास नंतिनो कर सकू, कैसे को शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास करी जांच।
6: हमारे यहाँ डाइट में मॉडल बाल वाटिका स्थापना करी जा रहा है, उसमें हम शारीरिक विकास अंतर्गत इंडोर खेल और आउटडोर खेल लीजिए बहुत हम सामान रख रही और वह व्यवस्था कर रहे हैं। इंडोर खेल अंतर्गत हमारे मॉडल बाल वाटिका कमरे भीतर है लूडो, सांप सीढ़ी और जो हमारे पुराने बाघ बकरी वाले खेल छी वो खेल रखी जा रही। और नंताल जी बहुत जो सब किचन सामान छू और रुपए पैसे वाल छिन वह खेल छू। हमार जो और सामान होनी जो देर हम खेल सकनू या चित्र बनौन वाल चित्रकारी छिन पजल छिन उनको वह रखी जरा बहुत हम पपेट ले रखें जल नंतिन आप कमरे भीतर खेल सकें। और ये दोहर हमारा आउटडोर खेल छू। आउटडोर खेल में हमारा मॉडल बाल वाटिका सामने मैदान छू, उमें नंतनाथ आउटडोर खेल में क्रिकेट छू और वॉलीबॉल छू, फुटबॉल छू और झूला छिन और जो स्लाइडिंग होनी हम घिस्से पट्टी बुझी उ प्रकार हम लोग खेलो व्यवस्था कर रहे हैं और रस्सी कूद बहुत से हम वह खेल हम वह खेलो उन लोग। तो वो हमारे शारीरिक विकास लीजिए जहाँ मानसिक विकास अंतर्गत हमारे मॉडल बाल वाटिका में रीडिंग कॉर्नर स्थापित कर दे रहा। रीडिंग कॉर्नर अंतर्गत बहुत से किताब रख रही और वो किताबों विशेषता यह चूँकि नंतना उम्र अनुसार 3 वर्ष / 8 वर्ष तक नंतना लीजिए वो किताब रखी जा रही है वो आपको मनपसंद उम्र किताब पढ़नी
0: अलग
6: अलग किताब पढ़नी और मानसिक विकास हिसाब छू। और फिर उम्र हम या बहुत से जो हमारे या मैग्नेटिक पजल छिन उल रखी जा रही ताकि उम्र विकास हो जो मैग्नेटिक पजल में हम बात कहूँ कि जैसे त्रिभुज छू और हमारे आयताकार आकृति छिन गोलाकार आकृति छिन उस प्रकार सामान रख रही हम जल उन मानसिक विकास लग जा। और यह तरह हमारे पास संगीत लब हम एक कमरे रख रहा संगीत कॉर्नर बन रहा जब मैं संगीत सामान जैसे हम पास हारमोनियम छू ढोलक छू और ढपली छिन और बहुत से पीपी हम रख रही ताकि नंचिन को बजूनी और उन आप मानसिक विकास लोल हों। ये प्रकार हम बहुत से नापजोक वाली इकाई रख रही वहाँ जैसे लीटर छिन और मीटर छू यह प्रकार हम रखा कि उनको गणितीय संकल्पना लो ना क्लियर होनी।
5: ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था आप यहाँ छू मॉडल बाल वाटिका में जेल के हमारे ननु हालुक चहुमुखी विकास हो। सर जैसे आप कहो कि यो बाल वाटिका यहाँ डाइटक पास छू तो यस स्कूल हमारे गौनोमला छना और
6: यह हमारे उत्तराखंड

0: कारमे सबै जात मूल नाम सुनल ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा वह अंतर्गत हम यह स्थापित कर रहे हैं मॉडल बाल वाटिका का। और यह सब गौनू में या हम प्राइमरी स्कूलों नजदीक का आंगनवाड़ी केंद्र गुन आंगनवाड़ी केंद्र मतलब ये स्थापित करी जरिन वाला जादुई पिटारा करने वह सामान रखी जरा। लेकिन बहुत स्कूल में हम देखनु कि वो सामान बंद बंद पड़ी जरा वह हम उनको ट्रेनिंग ले दिनु या कसिन अंतराल उपयोग हल। और कुछ लोग जागरूक छिन हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वो चलूनी वह बढ़िया स्थापित करो देखने में मिलू कि बहुत बढ़िया अंतराल विकास हुआ है।
1: बिल्कुल, लेकिन अंतिम जस देखनी और अपहतल करवेर उनको ज्यादा समझ में होने बात अगर वो खेलाल खेल खेल में सीख लेनी या कहानी के माध्यम में सीख लेनी तो इस तरह का व्यवस्था अपने मॉडल बाल वाटिका में कर रखी। आंगनवाड़ी केंद्र में जो कार्य करती हुई वो बाल वाटिका मॉडल बाल वाटिका के चलोनी तो उनका आप लोग प्रशिक्षण कैसे दिशा।
0: हम जो आंगनवाड़ी कार्य करती छिन और उन्हर जो हमारे बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर छिन उन्हें हम ट्रेनिंग या व्यवस्था करनु। पिछले साल हमूल बहुत सा ट्रेनिंग दिन हमूल एक उत्तरा मॉड्यूल पर आधारित एक ट्रेनिंग दिया है वो ट्रेनिंग वाला हमूल उनको मॉडल बाल वाटिका बारे में बताया। और एक हमूल जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी छिन उन्हें दगरी आंगनवाड़ी वाला अगला ट्रेनिंग दिया है। और एक हमूल टॉय बेस्ड वाला ट्रेनिंग दिया जमा हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को हम मॉडल बाल वाटिका मतलब दिखनु और वैसे संबंध में जैसे कठपुतली निर्माण हूँ और खिलौना कैसी बनी और जो हमारे पारंपरिक खेल छिन और हमारा जो पपेट होनी या कठपुतली हूँ उनको बोलनु तो वो हमको उनको सीखनु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को और वो नंत्राली जी बड़े उपयोगी हुई। हमारे मॉडल बाल वाटिका में एक आई महत्वपूर्ण हम ले रख रहा नंत्रा का फूल बहुत पसंद हुई तो हम बगीचे में फूल ले खेल रही तो ताकि नंत्र फूलू दगल वो मस्त रहो। और हम आपको ट्रेनिंग में ले बात को कुनु कि जतिला तुम्हारे आंगनवाड़ी केंद्र छु वह फूल लगवाए और फूल नंत्रा का बहुत पसंद हुई और फूल दिवार खुश ले रूनी और बहुत कुछ सीखनी ले।
1: फूल तो सबन के ही भल लागने और फिर नानते नान करते भल लागल ही जैसे सर आप कहो कि मॉडर्न बाल वाटिका में आपू अपन आंगनवाड़ी जो कार्य करती हूँ उनके लिए ट्रेनिंग दिशा तो ट्रेनिंग में वो सीख भी और नानते नान का सीखूनी। और ये बहुत बड़ी बात छू की हम नानते नान के खेल खेल में हम बहुत कुछ सीखा दिन उन्हें सामाजिक विकास उन्हें मानसिक विकास शारीरिक विकास खेल खेल में हजा तो नानते लोग हमारे चहुमुखी विकास या बाल वाटिका मॉडर्न बाल वाटिका जरियल होने लग रहा तो ये एक मुख्य उद्देश्य के छू।
0: मॉडर्न बाल वाटिका मुख्य उद्देश्य 3 वर्ष व 8 वर्ष नंतना सर्वांगीण विकास करण और यह सर्वांगीण विकास करण में हम जो उन्हें शारीरिक विकास कुनु कि उनको खेल खेल में सीख दें। और नंतना का खेल बहुत प्रिय होनी कविता कहानी सुनो जो उनको कोई सुनो सो उनको बहुत तो बहुत लागू और वह दगर दगरी वो चित्र बनून संगीत सीखन और जो गणितीय पजल छिन उन्हें उनको पसंद छिन और जो मिलगा उनको फूल या पर्यावरण वगैरह लगा रू उनको पसंद छू तो उनको ध्यान में रख बैर हम बगैर औपचारिकता भरी हुई उनको ये चीज सीखना हमारा मुख्य उद्देश्य छू ताकि नंतिन जब आप स्कूल में जानी प्राथमिक कक्षाओं में तो वह अगर भली के सीख जाए। हमारे में जो आये नई शिक्षा नीति छू मैं फाउंडेशन स्टेज को नहीं कि 3 साल बाल वाटिका छिन बाल वाटिका फर्स्ट बाल वाटिका सेकेंड बाल वाटिका थर्ड और कक्षा 1 और 2 तो वह बात जब आप स्कूल में जानी कक्षा 3 में तो वह बहुत बढ़िया भाई आप पढ़ाई कर सकनी यह हमारा मुख्य उद्देश्य है।
1: बहुत बड़ी प्रयास मॉडर्न बाल वाटिका जब हमारे बुनियाद पक्के होली तो तब वो इमारत भली का ठाड़ सके ये बहुत बड़ी बात चूँकि नंतना के हम नंचे ने बटी अगर भली का सारा चीजों बारे में बता दूँ उन्हें चहुमुखी विकास हजाल उन्हें शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास हजाल और बच्चे हर चीज का समझण भेजा भली का यहाँ तो बहुत बड़ी प्रयास है छू। 3 में जब स्कूल में पढ़ो जा तो उनको सारी चीज समझ में आ है ना तो मॉडर्न बाल वाटिका बहुत बड़ी प्रयास है छू। तो आप हमारे श्रोता थे के कौन चला एक बार में
0: हम श्रोता हूँ यह कुनू की जो मॉडल बाल वाटिका हमारे डाइट में स्थापित कर अगल बगल जो नानतीन छिन 3 वर्ष व 8 वर्ष वो नंतरा का तुम कब तला जब हम ऑफिस टाइम हूँ मैं ले सकता और हम स्कूल हूँ ला करो जो प्राइमरी स्कूल छिन और आंगनवाड़ी केंद्र हूँ ला हम ये बात कही जा रहा है कि तुम आपको नंतरा का या अधिक से अधिक भ्रमण कराओ वह नंतरा का विकास हो। और पिछले साल हम 14 नवंबर हूँ जो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू छिन उमर जन्मदिन में बाल दिवस आयोजन हूँ तो हम सरकार की आली और कर्नाटक खोला वहाँ आई नंतरा के या मॉडल बाल वाटिका बारे में बता और उस दिवस के बाल दिवस के बढ़िया भान मना जहाँ नानतीन बहुत आनंदित है हम मानन छू कि मॉडल बाल वाटिका सबसे मुख्य उद्देश्य तब सार्थक हो जब हम नंतना विकास में योगदान दे सकूँ और नानतीन हमारे देश भविष्य छिन और तनाव मुक्त रहल बगैर औपचारिकता बहुत कुछ सीख जाए यह हमारा उद्देश्य छू। और यह हम पूर्वानल जी हमेशा अग्रसर रहनु और हम आपू श्रोता हूँ लोग जो तुम्हारा अगल बगल नानतीन छिन उनको

0: हमेशा कुछ ना कुछ नई सीखूँ या उन्होंने विकास के लिए आपको योगदान दिया।
1: बिल्कुल बहुत बड़ी जानकारी आप दे, उम्मीद करूँ कि हमारे श्रोता देगड़ी यह जानकारी जरूर फायदा उठाल, अपना अमूल्य वक्त अपन हमन के दे एक लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप बोला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों को चौमुखी विकास का वातावरण प्रदान करती मॉडर्न बाल वाटिका, यह विषय पर श्री रमेश रावत जी द्वारा करी गई हमारी यह बातचीत आप लोगों ने सुनी।
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
4: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa. Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC applies.
2: पोषण की पाठशाला में आज हम बात करने लग रही मोट अनाज के बारे में। मोट अनाज की अगर हम बात करूँ तो ज्वार, कॉर्न, मडू, मादी और जो घुआ खून जनू हम जुनूक लकोनु, ये सब मोट अनाज में होनी। यह मोट अनाज हमारे लिए बहुत गुणकारी हो सकती हो। मोट अनाज में कुपोषण है लड़ने और हमारे आंख है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उनका नियंत्रित करने वाला गुण होनी। हमारे उत्तराखंड का मोट अनाज में मडू, मादीर, कॉर्न और ज्वार मुख्य छन। हमारे यहाँ मोट अनाजों की खेती के बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स मिशन में योजना की शुरुआत करी गई। यह योजना तहत मडुआ के फल उन्नत किस्म के बीज दिए जा और किसानों को प्रशिक्षण दिए जा। दगड़े सहकारी समितियों के जरिए मडू और खरीदने की व्यवस्था लाई गई जाए। देखो हमारे यहाँ पहले का बटी मोट अनाज कहीं खूब खाई जा, लेकिन उन्हें खेत करी जाती तो आराम सवन के खूब मिल ना जाती। हमारे यहाँ मोट नाजक समृद्ध परंपरा रही छू। गरीबों का खान कहीं जाने वाले मोट अनाज के आज पूरी दुनिया में एक पहचान मिल गई। पूरी दुनियाल एक गुणों के आज पहचान हालो। लेकिन यो पूरी दुनिया तो आज वो मोट अनाज के लिए बेर इतु गंभीर है, लेकिन हम खुद ससीब छाए कि देखियो कि यो मोट अनाज हमारे यहाँ पुरान बखत बटी के हमारे परंपराओं में और सब घर बात चुकी गरीब कना यो आराम मिल जाछी। मोट अनाज पौष्टिकता है भरपूर होनी। आज परीक्षणों रिपोर्टों के मुताबिक पकौड़ों के बाद ले मोट अनाजों में मौजूद विटामिन और पोषक तत्व खत्म नहीं होने। काचा अनाज और उन्हें बनी पकवानों पर अनुसंधान और निष्कर्ष यह निष्कर्ष निकाल रखो वैज्ञानिक कुल की एक सुपर फाड़ यानी कि सब है भल खान संज्ञा दे रखी। और देखे राज्य सरकार उपेक्षित मोट अनाज के राशन वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना में शामिल करने की सिफारिश लगा रखी। तो ये तो गुणकारी पौष्टिक और कुपोषण है लड़ना ताकत देने वाले यह मोट अनाज जग खबीर हम आपू सब स्वस्थ और निरोगी रह सकलूँ। तो देखो हमन के अपने खाने में मोट अनाज के खूब उपयोग करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और निरोगी रह सकूँ। और हम तो यही जानूँ कि हमारे सब दिद भूली जो छन वो हमेशा स्वस्थ रहो, निरोगी रहो और हमारे कार्यक्रम के यसी के सुनते रहो।

और अब यह गीतक दगड़ आज एक अपन कार्यक्रम संपन्न करने अपन रेडियो दगड़ी दीपा जोशी की अनुमति दियो। कार्यक्रम में प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत। आगे का फिर आप लोगों ने भेंट हुई, तब तक आ लीजिए। नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम अर्पण सुन रही थीं। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: 10% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिण पंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षा कर्मियों की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए। शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 9 पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में 13 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड के लिए देहरादून पुलिस ने विशेष यातायात डायवर्जन प्लान जारी किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.9

0: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों, कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक कर्मियों को वापस अपने विद्यालयों में भेजा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 30 जून तक सभी प्रकार की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दूसरे कार्यालयों में तैनात शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबद्धीकरण आदेश भी निरस्त करने के निर्देश दिए। श्री रावत ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को शिक्षकों की संबद्धता तत्काल समाप्त कर उन्हें विद्यालयों में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक जो शिक्षक अपने मूल तैनाती स्थल पर नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि अधिकांश संबद्धता केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए थी, लेकिन कई शिक्षक एवं कर्मचारी वर्षों से अपने मूल विद्यालयों से दूर कार्यरत हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षणेतर कार्मिकों के सभी संबद्धीकरण आदेश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर वन विभाग और 130 इको टास्क फोर्स के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के एक निजी स्कूल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का विषय नहीं बल्कि हर नागरिक की सतत जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से अधिक पौधारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर हरित और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। वहीं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैलियां निकाली और स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में जैव विविधता, वन एवं जल संरक्षण और सतत विकास पर भी जानकारी दी गई।
1: के अंतर्गत कई जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी से यही कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही साथ प्लास्टिक से भी दूर रहना चाहिए, तो इसका भी संदेश है वो प्रसारित किया जा रहा है और सबको मिलकर काम किया जाना चाहिए, सब करना चाहिए और आसपास अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तो यही संदेश दिया जा रहा है। इसी के क्रम में जनपद मुख्यालय में भी कार्यक्रम जो है फॉरेस्ट के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा और इको टास्क फोर्स जो कार्यरत है पिथौरागढ़ में उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर नैनीताल प्राणी उद्यान में पौधारोपण, भाषण तथा नृत्य नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक कंपनी के स्टोर में भीषण आग लगने से स्टोर में मौजूद दो कर्मचारियों की जलकर मृत्यु हो गई। देर रात तक मौके पर दमकल और पुलिस फोर्स तैनात रही। जानकारी के अनुसार कल देर रात करीब 11:30 बजे स्टोर में आग लग गई। इसके बाद पास ही सटे एक अन्य स्टोर के कर्मचारियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर दमकल के साथ ही एसपी सिटी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाई गई। आग से वहां सो रहे दो कर्मचारियों की जलकर और दम घुटने से मृत्यु हो गई। शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 9 पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है, जबकि 5 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस निवेदिता कुकरेती को कुमाऊं रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। आईपीएस जितेंद्र चौधरी को देहरादून का यातायात पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कुमाऊं की आईजी रिद्धि अग्रवाल को आईजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। आईजी विम्मी को पुलिस दूरसंचार व फायर सर्विस का प्रभार दिया गया है। आईजी कृष्ण कुमार वीके आईजी यातायात व जीआरपी बनाया गया है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ताकवाले को आईजी प्रशिक्षण के साथ साथ आईजी सीआईडी बनाया गया है।
2: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में 13 जून को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड को देखते हुए देहरादून पुलिस ने 6, 9 और 11 जून के लिए विशेष यातायात डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। परेड के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एसपी ट्रैफिक के अनुसार 6 जून और 9 जून

0: को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और 11 जून को सुबह 5 बजे से 11:30 तक डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि परेड के दौरान आईएमए क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के सामान्य यातायात को आईएमए की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। बल्लूपुर से प्रेमनगर जाने वाले वाहनों को रांगड़वाला तिराहे से मिट्टीबेरी मार्ग होते हुए भेजा जाएगा। वहीं प्रेमनगर से शहर की ओर आने वाले वाहनों को दरू चौक, मिट्टीबेरी और शिमला बाईपास के रास्ते निरंजनपुर मंडी होते हुए शहर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। सेलाकुई और भाऊवाला क्षेत्र से आने वाले सभी भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला और नया गांव मार्ग के जरिए शहर की ओर भेजा जाएगा। इसके अलावा देहरादून से विकासनगर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डाइवर्ट कर धर्मावाला मार्ग की ओर रवाना किया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग देहरादून के मुताबिक 7 जून तक प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
1: पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
0: आगामी मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूकाडा ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए संचालित प्रत्येक हेली कंपनी द्वारा यूकाडा को 10-10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका उपयोग आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों में किया जा रहा है। वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियों द्वारा कुल 80 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराए गए हैं। इन घंटों का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू तथा दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए 12 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 और सामान्य वर्ग के 153 पदों पर भर्ती होगी। सेवा चयन बोर्ड स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो 2 जुलाई निर्धारित की है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सोलर प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद की पीठ ने बाजार के उतार चढ़ाव और हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी पिछले वर्ष की दर यानी 4.10 रुपये प्रति यूनिट का लाभ मिलता रहेगा। वहीं आयोग ने कहा कि एमएसएमई नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सोलर टैरिफ से नहीं घटाया जाएगा। यह लाभ सीधे तौर पर प्रोजेक्ट लगाने वाले युवाओं और उद्यमियों को ही मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक कर्मियों की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए। शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 9 पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में 13 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड के लिए देहरादून पुलिस ने विशेष यातायात डायवर्जन प्लान जारी किया। और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 14.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। श्रोता लीजिए, पेश है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हेमा सरदेसाई के गाए समीर के लिखे इस नगमे के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का। आइए कार्यक्रम आगे सुनते हैं। एक राम राजस्थानी का कलाम फनकार है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन।

भूपेंद्र और मिताली के गाए इस नगमे के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम आप संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है नाटक गूंजती याद।

0: देखिए तो ये नई साड़ी।
1: ये क्या, बाहर जगमग दिवाली की धूम मची है और आप यहाँ कमरे में सिर पर मफलर बांधे गुमसुम बैठे हैं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है, तुम जाओ।
1: अरे त्योहार के शुभ दिन ये कैसे बोल रहे हैं आप? जरा मेरी ओर तो देखिए, हमारी शादी के बाद आज ये पहली दिवाली आई है। और आपने कल कहा था ना कि दिवाली की रात मैं फिर नई दुल्हन बनूं, कैसी लगती हूँ मैं?
2: अच्छी, बहुत अच्छी।
1: ये क्या, मुंह लटकाकर फिर गुमसुम हो गए? अरे मेरा नहीं तो अपनी माँ का तो ख्याल कीजिए, उन्होंने तिजोरी वाले कमरे में लक्ष्मी पूजा शुरू कर दी है।
3: बाबू, रमेश को लेकर आओ ना।
4: ला रही हूँ माँ जी।
1: चलिए माँ जी आपको बुला रही हैं। स्वर्गीय लाला जी के स्थान पर आप ही तो आज लक्ष्मी पूजन करेंगे।
2: लक्ष्मी पूजन?
1: हाँ, और आज मेरा छोटा भाई बब्बू भी दिवाली मनाने आया है।
5: जीजा जी। अरे जीजा जी, मैं बाहर बालकनी में कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। देखिए मैं कितने सारे बम, पटाखे, हवाइयाँ और फुलझड़ियाँ लाया हूँ। आइए चलिए ना बाहर, चलिए ना।
2: छोड़ मुझे बब्बू, चला अपने पटाखे खुद ही।
6: बहू रानी, माँ जी बुलाए रहे।
1: आती हूँ रामू। चलिए
2: चलो
1: चलिए।
7: लक्ष्मी माता

0: दूसरी ही भाषा बोलत है, फटाफट बोलत है।
1: जीजा जी नहीं, कोई और आदमी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है।
0: अरे इन पे तो कोई जरूरी बंगाली भूत।
1: सुनिए सुनिए, कहीं कोई आग नहीं लगी, आपको पटाखों की आवाज से भ्रम हुआ है।
2: সবাই চলে গেল, সবাই কমলা কমলা বলেছি, ওরে মজুমদার কমলাকে বাঁচাও বাঁচাও, আমি আছি আমি আছি।
1: শুনিয়ে
2: কমলা,
1: শুনিয়ে
2: কমলা,
1: কমলা
3: अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो रामू?
1: जी जी, इनके सिर में चोट लगी है।
3: वो खून रहने लगा, मैं अभी दवाई लाई। अरे बहू, रमेश तो बेहोश हो गया है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो और मुनीम जी को भी बुलाओ।
1: बाबू भाकर बापू को बुला ला, मैं डॉक्टर को फोन करती। अच्छा जी जी।
3: त्योहार के दिन कैसा अनर्थ हो गया। हे लक्ष्मी मैया, इस घर के आखिरी चिराग को बचाओ, ये अगर बुझ गया तो लाला घराने का वंश ही खत्म हो जाएगा। हे

0: डॉक्टर साहब, मेरा रमेश ठीक हो जाएगा ना?
1: आप घबराइए नहीं माँ जी, मैंने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया है। सिर की चोट से बेहोश हुआ है, मैंने सिर में पट्टी कर दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है, जल्दी होश में आ जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, मैं रमेश को आपके हवाले करती हूँ, ये उनकी आखिरी निशानी है। डॉक्टर
2: मालकिन, मालकिन आप चिंता ना कीजिए, लाला जी ने भी तो पहले इंजीन डॉक्टर साहब की सलाह से रमेश का इलाज कराया था।
1: हाँ, स्वर्गीय लाला सांवलदास जी को मुझ पर काफी भरोसा था, मेरी सलाह से उन्होंने।
3: डॉक्टर साहब।
1: बेटी तुम?
2: ये मेरी लड़की है उषा, रमेश जी की पत्नी।
1: अब याद आया।
2: क्या बताऊं डॉक्टर साहब, लाला जी को भान हो गया था कि वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, भाई गणेशी लाल, जल्दी से अपनी बेटी को बुलाओ और मेरी आंखों के सामने रमेश की शादी रचाओ।
1: अच्छा।
2: ये उषा कानपुर में अपने मामा के पास रहती थी, वहाँ बीए में पढ़ती थी।
0: डॉक्टर साहब, अब इस बच्चे के सुहाग की रक्षा कीजिए। डॉक्टर साहब।
3: माँ जी, आप तो इनके पास बैठी है ना, मैं जरा डॉक्टर साहब को दूसरे कमरे में ले जाऊँ।
0: हाँ बहू, ले जाओ, तुम पढ़ी लिखी हो, सब बात समझ लो।
2: अरे उषा, डॉक्टर साहब से अकेले में क्या बात करना चाहती हो?
3: बापू, आप यहीं रुकिए, आइए डॉक्टर साहब।
1: बेटी, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हारे त्याग और बलिदान के लिए तुम्हें शाबाश देना चाहता हूँ।
3: धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं छिपाऊंगी नहीं, उच्च शिक्षा के साथ साथ मेरे भीतर भारतीय नारी के संस्कार भी है। विधाता ने जो सुहाग मुझे दिया, उसकी अखंडता और उसके जीवन के कुशल क्षेम की सच्चे दिल से कामना करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन मेरे बापू ने स्वर्गीय लाला जी के कारोबार और लाखों की जायदाद को हथियाने के लिए एक चाल चली थी, और मैं उस चाल में अनजाने आ गई। मैं दिल्ली से दूर कानपुर में थी। शादी से पहले बापू ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि मेरे होने वाले पति दुर्घटना में अपने पहले जीवन की याददाश्त खो चुके हैं और उन्हें 25 वर्ष की उम्र में बच्चे की तरह फिर से बोलना और लिखना पढ़ना सिखाया गया।
2: मेरे खिलाफ ये क्या जहर उगल रही है?
3: तो बापू, आप बाहर खड़े हमारी बातें सुन रहे थे।
2: डॉक्टर साहब, इस लड़की को तो मेरा उपकार मानना चाहिए कि मैंने इसे।
3: हाँ बापू, मैं आपका उपकार मानती हूँ कि आपने मुझे एक 25 वर्ष के बच्चे की माँ का भी कर्तव्य सौंपा और पत्नी का भी। खैर, आप आ गए हैं तो बैठिए, मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। डॉक्टर साहब, आप इस घर के फैमिली डॉक्टर होने के नाते मेरे पति की पूरी कहानी तो जानते ही होंगे।
1: हाँ, उस दिन से तुम्हारे पति की कहानी जानता हूँ, जब लाला जी ने अपने इकलौते बेटे के मरने पर अपनी एकमात्र बेटी के लड़के रमेश को कानूनी तौर पर अपना दत्तक पुत्र बनाने का फैसला किया था।
2: डॉक्टर साहब, लाला जी को ये सुझाव मैंने ही दिया था, तब रमेश एकदम स्वस्थ था और बनारस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इसका बाप यानी कि लाला जी का दामाद आसाम में दिगबोई की तेल फैक्ट्री में इंजीनियर था और इसे भी वो इंजीनियर ही बनाना चाहता था। अब इसमें मेरा और लाला जी का क्या दोष कि 2 साल पहले रमेश छुट्टियों में अपने बाप के पास दिगबोई गया और अचानक तेल का एक बड़ा टैंकर फटने से इसके माँ बाप और छोटी बहन की मृत्यु हो गई और ये भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया। संयोगवश मैं उन दिनों वहीं था। लाला जी जब बीमार रहने लगे तो वे मुझे ही साल में 1-2 बार बेटी और दामाद के कुशल क्षेम की खबर लाने के लिए दिगबोई भेजा करते थे। उस दुर्घटना से मैं इसलिए बच गया था कि मैं किसी काम से बाजार गया हुआ था। भगवान की कृपा से उस दुर्घटना में रमेश की भी जान बच गई। मैं इसे घायल अवस्था में वहाँ अस्पताल ले गया था, वहीं पता चला डॉक्टर साहब कि दिमागी चोट के कारण अपने पहले जीवन की याददाश्त बिल्कुल खो चुका है। उसी हालत में मैं इसे दिल्ली लाया और फिर डॉक्टर साहब की

0: सलाह से।
1: हाँ बेटी, मेरी सलाह से लाला जी ने तुम्हारे पति को मेंटल हॉस्पिटल के उस नर्सिंग होम में साल भर रखा था जहाँ मेंटली रिटार्डेड बच्चों का इलाज होता है। वहाँ इसने फिर से बोलना और थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन दुर्घटना से पहले के जीवन की याददाश्त को वापस न पा सका।
2: डॉक्टर साहब, आप ये जानकर खुश होंगे कि अभी पटाखों के धमाके से उनकी वो याददाश्त लौट आई है।
1: ये क्या कह रही है बेटी?
2: मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर साहब। बीए में मैंने थोड़ा बहुत मनोविज्ञान भी पढ़ा था। मुझे तो लगता है जैसे पटाखों के धमाके से डिगबोई में तेल के टैंकर के फटने और आग में माँ बाप के जलने की सोई हुई स्मृति फिर जाग उठी है। मतलब ये कि पटाखों के धमाके ने अतीत और वर्तमान के बीच की दीवार गिरा दी है।
1: जियो बेटी, तुम्हारी बात में काफी वजन है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि रमेश बंगला क्यों बोलने लगा है?
2: डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब फौरन मिल सकता है अगर ये मालूम हो जाए कि कमला कौन है।
3: कमला?
4: अरे छोटे मालिक ने आंखें खोल दी हैं, लेकिन फिर वही भूत का साया।
2: आइए डॉक्टर साहब,
5: कमला कमला गाओ ना अमार हुई गान, अमार गीत तुम्हार बानी, तुम्ही गाओ अमार गान अमर हुए जाग।
1: ये रमेश तो किसी कवि की तरह बातें कर रहा है। इंजीनियरिंग का छात्र कवि?
0: नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ये रमेश नहीं, कोई भूत है।
5: जीवन,
2: आप लोग जरा चुप हो जाइए, मैं बात करती हूँ इनसे।
5: निकट आओ,
2: सुनिए, सुनिए।
5: की बोले?
2: आप किस कमला को बुला रहे हैं?
5: के हमारा कमलार मध्य कौन आया? के कमला का पति मजूमदार?
1: उषा बेटी, अब तबीयत कैसी है?
2: मैं तो ठीक हूँ डॉक्टर साहब, उनका क्या हाल है?
1: रात को जो इंजेक्शन लगाया था उसके असर से रमेश अभी तक सो रहा है।
2: डॉक्टर साहब, अगर कष्ट न हो तो जरा बापू को यहाँ मेरे पास बुला लाइए।
1: अभी बुला लाता हूँ बेटा।
0: बिटिया बिटिया, क्या बात है? उठो नहीं, उठो नहीं बेटे, लेटी रहो, लेटी रहो। हे भगवान, कल रात इस राक्षस ने तो।
2: बैठिए बापू। डॉक्टर साहब, आप भी बैठिए। बापू, आपने डिगबोई की दुर्घटना के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उस कमला के बारे में कुछ नहीं बताया जिसका इन्होंने कल रात बार बार नाम लिया। क्या सोच रहे हैं आप बापू?
0: बेटी, मैंने तुमसे अब तक कमला की बात इस ख्याल से छिपाई हुई थी कि तुम्हारे गृहस्थ जीवन में कोई उलझन न पैदा हो। कमला एक बंगाली लड़की थी।
2: थी?
0: हाँ, वो अब इस संसार में नहीं है। तेल टैंकर वाली दुर्घटना के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी।
2: क्यों?
0: बताता हूँ। कमला का पूरा नाम था कमल वासनी देवी।
2: कमल वासनी देवी? हाँ, दिवाली की रात माँ जी ने लक्ष्मी माता की जो आरती गाई थी उसमें ये नाम आया था।
1: और रमेश ने सुना था।
0: कमला वाराणसी के एक भद्र बंगाली परिवार की लड़की थी, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और बहुत अच्छा गाती थी। वहीं पढ़ते हुए रमेश की उससे जान पहचान हुई और जान पहचान ने धीरे धीरे प्रेम का रूप ले लिया। उसी प्रेम के कारण रमेश का इंजीनियरिंग की पढ़ाई की ओर से ध्यान हट गया और उसका सारा समय कविता लिखने और कमला का संगीत सुनने में बीतने लगा।
1: तो इस मेलजोल में वो बंगला भाषा भी सीख गया हो।

0: होगा।
1: हाँ, तभी कमला के माँ बाप ने उसे कलकत्ता ले जाकर उसकी शादी धीरेन मजुमदार नाम के एक इंजीनियर से कर दी। संयोग देखिए, धीरेन मजुमदार को दिग्बोई की उसी तेल फैक्ट्री में नौकरी मिली जहाँ रमेश के पिता सीनियर इंजीनियर थे। रमेश छुट्टियों में जब दिग्बोई पहुंचा तो विधाते नहीं जैसे उसे फिर कमला से मिला दिया। उसे किसी दूसरे की पत्नी के रूप में देखकर रमेश पागल हो उठा। जैसा कि मैंने कल बताया था, उन दिनों मैं भी वहीं था। एक दिन मैंने एक पार्क के एकांत कोने में रमेश और कमला को देखा। मैं झाड़ी के पीछे छुप गया।
2: रमेश, आज मैं तुम्हें तुम्हारा लिखा वही गीत सुनाती हूँ।
3: बाहर में गया वो गीत। कमला, याद करो अपने वो प्रेम प्यार के वादे, वो कस्में। सुनो, तुम्हें मजुमदार को तलाक देकर मुझसे शादी करनी होगी। सुनो, मैं गरीब नहीं, लाखों की संपत्ति वाले मेरे नाना जी मुझे अपना दत्तक पुत्र बना रहे हैं।
2: ये तो ठीक, लेकिन रमेश मेरी विवशता भी तो देखो।
3: क्या
2: आधार सिंदूर मेरे पांव की बेड़ी बन गया है।
3: नहीं नहीं कमला, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें ये बेड़ी तोड़कर मेरे साथ दिल्ली चलना होगा कमला।
2: अरे आमार पागल बंधु, मुझे जरा सोचने का समय तो दो। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं वाराणसी छोड़ने के बाद तुम्हें कितना याद करती थी, कितना याद करती थी।
3: सच
2: तुम्हारा लिखा गीत गा गा कर तुम्हारे ध्यान में कैसे खो जाती थी, कैसे खो जाती थी।

0: अब ये भौरा तुमसे अलग नहीं रह सकता, तुम मेरी हो।
1: इश्क और मुश्क छिपा नहीं रह सकता डॉक्टर साहब। जब रमेश के पिता को इस प्रेम कांड का पता चला तो उन्होंने गुस्से से पागल होकर मेरे सामने रमेश को बुरी तरह डांटा और पीटा, और दूसरे ही दिन तेल के टैंकर के फटने से रमेश के माँ बाप बहन सब जलकर भस्म हो गए।
2: लगता है उस मेंटल शॉक से रमेश की पिछली याददाश्त खो गई।
3: लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो वो अपने वर्तमान जीवन की याददाश्त खोकर उस कमला को याद कर रही है। मुझे पहचानते तक नहीं, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते।
1: बेटी, उसे पता नहीं कि कमला अब इस संसार में नहीं है।
3: कैसे नहीं है? उसका भूत मेरे सुहाग के सिंदूरी महल पर कब्जा किए बैठा है। पापू, पापू, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मेरा जीवन बर्बाद किया? क्यों किया पापू?
2: जो होना था वो हो गया बेटा, अब धीरे से काम लो। देखो, रमेश का रोग काफी जटिल लगता है, लेकिन इस रोग का इलाज झाड़ फूक करने वाले किसी ओझा के पास नहीं। हाल ही में मेरा मित्र डॉक्टर सिन्हा जर्मनी से लौटा है, वो मानसिक रोगों का स्पेशलिस्ट है। रमेश को फौरन उसके क्लिनिक पे पहुंचाना होगा।

0: उषा है। डॉक्टर सिन्हा का मुझे संदेश मिला था कि
1: उस कमरे में जाइए आप, he's waiting for you.
0: थैंक यू।
2: आइए उषा जी, बैठिए।
0: थैंक यू।
2: एक बात बताइए उषा जी।
0: जी।
2: आप अपने पति रमेश से प्रेम करती हैं? जल्दी नहीं, खूब सोच समझ कर जवाब दीजिए।
0: उस दिवाली की रात को उन्हें जो दौरा पड़ा था, वो मेरे जीवन की विभाजन रेखा बन गया है। उससे पहले मैं अपने पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य निभा रही थी, धर्म निभा रही थी।

0: काले की रात के बाद जब वो वर्तमान छोड़कर अतीत में चले गए तो मुझे लगा कि वो मुझे छोड़कर मेरी सौत कमला के पास चले गए। उससे मुझे जलन हुई। अब मैं समझती हूं कि वो जलन नहीं प्रेम है, रमेश के प्रति सच्चा प्रेम।
1: धन्यवाद उषा जी, आपने अपनी भावनाओं का बहुत ही सही विश्लेषण किया है। क्या मैं मान सकता हूं कि अब आप अपने प्रिय रमेश को पूरी तरह स्वस्थ रूप में पाना चाहती?
0: क्यों नहीं डॉक्टर।
1: रमेश का केस स्प्लिट पर्सनालिटी यानी कि दो टुकड़ों में बटे व्यक्तित्व का केस है। दरअसल रमेश का व्यक्तित्व तभी दो टुकड़ों में बटने लगा था जब वो वाराणसी में कमला के प्रेम के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर गीत लिखने लगा था। बाद में दिग्बोई में असफल प्रेम, मां बाप बहन की मृत्यु से पैदा हुई अपराध भावना और ब्याहता स्त्री को पाने की पाप भावना ने तेल टैंकर के विस्फोट के साथ उसे ऐसा झटका दिया कि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण पुरुष वाला पिछला हिस्सा टूटकर गहरे अंधेरे में जा गिरा और वो वर्तमान में बच्चा बनकर जीने लगा। और अब उस दिवाली की रात लक्ष्मी माता की आरती के साथ पटाखों के धमाके ने उसे ऐसा दूसरा झटका दिया कि उसका वर्तमान व्यक्तित्व टूटकर अंधेरे में जा गिरा और उसका पूर्ण पुरुष वाला बंगाली लड़की से प्रभावित पहला व्यक्तित्व उजागर हो गया। आप मेरी बात समझ रही हैं ना?
0: जी।
1: पिछले दो सप्ताह में मैंने हिप्नोटिज्म और ड्रग्स की मदद से रमेश के दोनों टूटे व्यक्तित्वों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
0: तो क्या डॉक्टर?
1: अब मैं आपकी मदद से एक अंतिम प्रयोग करना चाहता हूं। मैं रमेश को एक तीसरा झटका देना चाहता हूं आपको उसके सामने कमला के रूप में पेश करके।
0: क्या मतलब?
1: रमेश ये मानने को तैयार नहीं कि कमला मर चुकी है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए बेताब है। इधर आपको वो किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसीलिए उसने दिवाली की रात आपकी जान लेने की कोशिश की। यही नहीं, आपका बड़े आकार का जो फोटो मैंने आपसे लिया था उसे जब रमेश के सामने रखा गया तो उसने उसे ऐसे चीर कर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जैसे कोई खूंखार जानवर अपने शत्रु को नोच नोच कर मारता है।
0: फिर भी आप मुझे उनके सामने पेश करना चाहते हैं डॉक्टर?
1: उषा के रूप में नहीं, कमला के रूप में।
0: जी।
1: मेरे एक बंगाली मित्र श्री चित्रंजन घोषाल इस काम में हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप उनके परिवार में रहकर बंगाली ढंग से साड़ी पहनना, बंगाली ढंग से बाल बनाना, मांग में सिंदूर भरना, आभूषण पहनना और बंगाली बोलना सीखेंगी। और हाँ, रमेश को हिप्नोटाइज करके मैंने नील कमल वाला वो पूरा गीत सुन लिया है और नोट भी कर लिया है। ये रहा वो गीत।
0: जी।
1: इसे बंगाली ढंग से गाने की तालीम भी आप घोषाल परिवार से ही लेंगी और फिर कमला के रूप में आप अगली पूर्णिमा की रात को ठीक 10 बजे नीले कमल फूलों से सजे हमारे बाहर वाले लॉन में अपने प्रिय रमेश से मिलेंगी ये गीत गाते हुए। अब आप श्री घोषाल के घर चले जाइए, उन्हें मैंने फोन कर दिया है, ये रहा उनका पता।
0: डॉक्टर सिन्हा, क्या आपको विश्वास है कि इस नाटक से वो ठीक हो जाएंगे?
1: विश्वास तो नहीं, आशा जरूर है। साथ ही डर भी है कि आपको पहचान कर रमेश कहीं वायलेंट ना हो जाए, हिंसा होकर आपकी जान ही ना ले ले।
0: आप मुझे अपनी जान की चिंता नहीं डॉक्टर।
2: डॉक्टर सिन्हा, उषा लॉन में रमेश से यूं अकेली और निहत्थी मिलने जा रही है।
3: मुनीम जी, आप ऊंचा ना बोलिए, होंठ में खड़े चुपचाप देखते रहिए।
2: लेकिन डॉक्टर, अगर रमेश ने अचानक बहू का गला पकड़ लिया तो?
3: माँ जी, आप चिंता ना कीजिए।
2: हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना।
4: डॉक्टर सिन्हा, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये प्रयोग सफल हो जाए।
3: उषा रमेश के पास पहुंच गई।

0: निकटाओ तुम्हार मुखे एक गीत सुनने को मैं तड़प रहा था। मुझे लगा जैसे तुम्हारे शोर से मेरी अंधेरी दुनिया में जगमग दीप जल उठा है।
1: किंतु तुम ये कैसे बोलते हो रमेशर मो तो बोलो ना।
0: अरे मैं तुम्हें खुश करने के लिए बंगला बोलने की कोशिश कर रहा था। आओ मेरी बाहों में मेरी कमला, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया।
2: बंधु अमार, मैंने भी तुम्हें पा लिया। उषा रूपे,
1: उषा रूपे।
0: उषा, उषा कौन?
2: तुम्हार बोधु।
0: अमार बोधु, याद आया, तुम
2: आमी तुम्हार कमला, आमी तुम्हारी उषा।
0: उषा, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, तुम सचमुच कमला हो, मेरी कमला, मेरी उषा।
2: रमेश,
0: उषा,
2: रमेश।

0: गूंजती याद, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। लेखक और निर्देशक थे चिरंजीत, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला, संगीत रचना शिव प्रसाद ने की, तकनीकी सहायक थे भगत सिंह। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री नीरज शर्मा, काजल बैनर्जी, बी आर नागर, राम मैनी, कर्नल जे पी गुप्ता, राजेंद्र वर्मा, नवेद असद, कमला कुमारी चोपड़ा और शर्मिला मलकानी।
1: यह नाटक आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कुमाऊनी गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम, उत्तराखंड के लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, दीवान सिंह कनवाल का गाया हुआ ये कुमाऊनी लोकगीत।

दीवान कनवाल के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के बाद आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं चंद्र सिंह राही के स्वर में ये गढ़वाली लोकगीत।

0: ललित मोहन पांडे के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम आप संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को है, आप कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब

0: कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार

0: सुरक्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आप किसान भाई सुने खेती की बातें। किसान भाइयों, आज की जानकारी का विषय है व्यावसायिक ब्रायलर पालन। जानकारी दे रहे हैं श्री हरीश चंद्र जोशी।
3: किसान भाइयों, आज भारत में ब्रायलर फार्मिंग एक सुविकसित व्यवसाय के रूप में उभर चुका है। ब्रायलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक पैसा कमाने का व्यवसाय है। कुक्कुट पालन आज एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है तथा पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा है। ग्रामीण विकास में कुक्कुट पालन की 2 प्रमुख भूमिकाएं हैं। प्रथम, छोटे व सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगार शिक्षित युवकों आदि के लिए एक सम्मानी व लाभप्रद व्यवसाय प्रदान करता है तथा दूसरा यह कि कुक्कुट एक पौष्टिक आहार प्रदान करता है। व्यावसायिक ब्रायलर फार्मिंग का मुख्य आधार अच्छी नस्ल के चूजों का समुचित प्रबंधन है।

क्योंकि चूजे ही बड़े होकर आय का स्रोत बनते हैं। अतः अधिक आय के लिए ब्रॉयलर चूजों का पालन ध्यानपूर्वक एवं वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। कुकुट जीवन के प्रथम 5 या 6 सप्ताह का समय ब्रूडिंग काल कहलाता है तथा उस काल में चूजों को जहाँ रखा जाता है उस भवन को ब्रॉड हाउस कहते हैं। ब्रॉयलर पालन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय व लाभप्रद व्यवसाय के रूप में स्थापित होता जा रहा है, क्योंकि इसके लिए कम भूमि की आवश्यकता, कम प्रारंभिक लागत, पैसे की शीघ्र वापसी, व्यापार में लचीलापन और ब्रॉयलर दाने को मांस में परिवर्तित करने में सक्षम होती है। ब्रूडर भवन में प्रति मुर्गी की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस भवन में बड़ी से बड़ी कितनी आयु की मुर्गे व मुर्गियां को रखा जाना है। इसके अतिरिक्त प्रजनन में प्रयोग होने वाले नर और मादा को अधिक जगह की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु में शीतकाल की अपेक्षा अधिक जगह की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जगह का आकलन मुर्गी की नस्ल व प्रकार के अनुरूप होती है। प्रति मुर्गी भूमि आकलन करते समय उपकरणों जैसे दाना पानी के बर्तन आदि द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्र भी ध्यान में रखना चाहिए तथा इसका आकलन चूजों की आवश्यकता के अतिरिक्त करना चाहिए। चूजों को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। सघनता के कारण चूजे दाना कम खाते हैं, चूजों में वृद्धि दर कम हो जाती है, दाने को मांस में परिवर्तित करने की क्षमता घट जाती है, मृत्यु दर में वृद्धि, मांसाहारी एवं हिंसक प्रवृत्ति बढ़ने के कारण चूजे एक दूसरे को चोंच से काट काट कर घायल कर देते हैं, जिस कारण वक्ष में छाले बनने की अधिक संभावना, पंखों की वृद्धि में ह्रास, मांस उत्पादकता एवं गुणवत्ता में कमी, अधिक खर्चा व हानि होती है। रंगीन व सफ़ेद बल्ब द्वारा प्रकाश प्रदान करना चाहिए। खुले भवनों में भी प्रथम 48 घंटों में कृत्रिम प्रकाश देना चाहिए। प्रथम 2 दिन तीव्र प्रकाश देना लाभकारी सिद्ध होता है, उसके बाद प्रकाश की तीव्रता कम कर देनी चाहिए। ब्रूडर का तापमान 50 डिग्री फारेनहाइट से 90 डिग्री फारेनहाइट या 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड एक दिन के आयु के चूजों के लिए होना चाहिए। मांस व प्रजनन हेतु नर चूजों के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे चूजे बड़े होते जाएं, तापमान 5 से 60 डिग्री सेल्सियस प्रति सप्ताह कम करते जाएं। यदि चूजे हावर छतरीनुमा बल्ब से दूर चले जाएं, इसका मायने हैं कि तापमान अधिक है, और यदि हावर के अंदर घुसकर गुच्छा सा बनाएं तो तापमान कम समझना चाहिए। स्थिति अनुसार तापमान बढ़ा या घटा सकते हैं। यदि चूजे हावर के नीचे समान रूप से इकट्ठे हो रहे हों तो तापमान को सही समझना चाहिए। जब तक चूजों के पंख पूरी तरह न निकल जाएं, वायु ऊष्मा स्रोत न हटाएं। सामान्यतः आरंभ में 1 वाट प्रति चूजा तथा बाद में 0.5 वाट प्रति चूजे के हिसाब से बल्ब लगाकर ऊष्मा प्रदान की जा सकती है। बिजली न होने पर अंगीठी या बुखारी जलाकर ऊष्मा प्रदान की जा सकती है। चूजे शीघ्र ही खाना व पानी पीना सीख लेते हैं। चूजों को प्रतिदिन स्वच्छ व ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं। पानी के बर्तन रोज साफ करके एकदम छतरीनुमा ब्रूडर के बाहर लीटर यानी बिछावन पर ही रखें। चूजों के आने से 4 घंटा पूर्व ही पानी ब्रूडर भवन में रख दें, ताकि पानी का तापमान ब्रूडर भवन के अनुरूप लगभग 65 डिग्री फारेनहाइट या इससे अधिक हो जाए। पानी में गुड़ भी मिलाया जा सकता है, इससे प्रारंभिक मृत्यु दर कम हो जाती है। प्रथम 15 घंटों में 8% तक गुड़ पानी में मिला के दी जा सकती है। यदि चूजे तनावग्रस्त दिखाई दें तो प्रथम 3-4 दिन पानी में विटामिन व इलेक्ट्रोलाइट घोल कर दिए जा सकते हैं। पानी सदैव दाने से पहले दें तथा यदि सब चूजों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो पानी के बर्तनों की संख्या व प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें। शुरू में फवारे नुमा तथा बाद में छोटे टब प्रयोग में लाए जाते हैं। चूजों को स्वच्छ व ताज़ा पानी ही उपलब्ध कराएं, जो कि उनकी शारीरिक वृद्धि व आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त तत्व प्रदान कर सकें। दाना संग्रहण अधिक से अधिक 7 दिन तक के लिए होना चाहिए। बड़े चपटे बर्तनों में दाना रखें ताकि सब चूजों को

0: आसानी से दाना मिल सके, दाना थोड़ा थोड़ा व जल्दी जल्दी देना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि दाना सब चूजे खा रहे हैं या नहीं। यदि कुछ समस्या है तो उनका निदान करें। कुछ प्रक्षेत्रों एवं मौसम में बीट चिपकने की समस्या हो जाती है, इसके निवारण हेतु टूटी मक्का, मक्के के छोटे कण देने चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन में एक ब्रूडर भवन में एक साल लगभग एक ही आयु के चूजे अंदर लिए जाते हैं तथा ब्रूडिंग के पश्चात उन्हें एक साथ ब्रूडर भवन से निकाला जाता है। इसके बाद नया समूह लेने से पूर्व भवन व प्रक्षेत्र की साफ सफाई व निसंक्रमण आदि कर लिया जाता है। इस प्रकार का प्रबंध रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन में काफ़ी प्रभावी होता है, किंतु उसमें मजदूरी की लागत ज़्यादा आती है। इस कारण कई प्रक्षेत्रों पर अलग अलग आयु सीमा के चूजे अलग अलग पाले जाते हैं। ब्रायलर उत्पादन हेतु अच्छी नस्ल के चूजे प्रतिष्ठित हैचरी अथवा स्रोत से लेने चाहिए। ब्रूडर हाउस एवं उपकरणों की साफ सफाई तथा निसंक्रमण आदि का विशिष्ट ध्यान रखें। ब्रूडर हाउस ऊंचे व सूखे स्थान पर बनाएं। ब्रूडर हाउस हवादार होने चाहिए तथा ताप नियंत्रक सुचारू होना चाहिए। लीटर सूखा एवं स्वच्छ रहें तथा कभी कभी लीटर को रैक अथवा खुरपी की सहायता से हिलाते रहना चाहिए। दाना पानी के बर्तन स्वच्छ और निसंक्रमण हों। दाना व पानी स्वच्छ एवं ताज़ा हो। दाना अच्छे प्रकार का होना चाहिए। प्रति मुर्गी पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराएं। चूजों को भी सघन अधिक चूजे एक जगह पर इकट्ठा न होने दें। नियमित रूप से उनका निरीक्षण एवं उपचार करें एवं मृत चूजों का निष्कासन एवं शव विच्छेदन आदि कराना चाहिए, जिससे मृत्यु के कारणों का पता चल सके। टीकाकरण कार्यक्रमानुसार कराएँ। सारे चूजे एक साथ अंदर व एक साथ बाहर रोग नियंत्रण में अत्यधिक प्रभावी हैं तथा इसे अपनाएं। कुछ अन्य विशेष ध्यान देने योग्य बातें जो कि ब्रायलर उत्पादन को प्रभावित करती हैं तथा कृषक के लाभ को प्रभावित करती हैं। कुक्कुट आहार की ऊंची कीमत एवं मिलावटी अथवा निम्न स्तरीय दाना, अच्छी नस्ल के चूजों की अनुपलब्धता तथा बिचौलियों द्वारा अच्छी नस्ल के साथ खराब चूजों की मिलावट, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, ब्रायलर तथा ब्रायलर उत्पादों की मांग में उतार चढ़ाव, अनिश्चित विपणन, उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सदैव प्रयास करना चाहिए कि किन कारणों से होने वाली हानि को रोकने के उपाय किए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर समीपस्थ विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। ग्रामीण कृषकों का एक कमज़ोर वित्तीय आधार होता है। आजकल अनेक बैंक तथा सहकारी समितियाँ कम ब्याज दरों पर आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही हैं। बीमा लाभ भी संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्रायलर इकाइयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कृषकों को इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। कृषकों को ब्रायलर पालन का प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण सैद्धांतिक से अधिक प्रयोगात्मक होना उत्तम है। ब्रायलर फार्म प्रारंभ करने से पूर्व एक अच्छा व्यवहारिक प्रशिक्षण और अनुभव अत्यंत आवश्यक होता है।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे व्यावसायिक ब्रायलर पालन विषय पर जानकारी दे रहे थे हरीश चंद्र जोशी। और अब इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:40 हुए हैं। अब एक नज़र हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

आज शाम 5:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत सरपंच रामजी भगत से बातचीत हम आपके लिए लेकर आएंगे। सायं 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:30 पर आप सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। संध्या 6:50 पर

गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। सभा के आरंभ में शाम 5:05 पर आप सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज के कलाकार होंगे दीवान कनवाल और शंकर उप्रेती। युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे आज शाम 5:15 पर। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:45। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन और स्वच्छता ही सेवा। भक्ति संगीत में कुछ भक्ति रचनाएं हम लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। आज के कलाकार होंगे हरि ओम शरण और अनुराधा पौडवाल। किसान भाई किसानवाणी कार्यक्रम सुनते हैं संध्या 7:00। आज की बातों का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कृषि वानिकी, और साथ ही सुनिएगा खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत जल प्रबंधन विषय पर बातचीत। मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरस आप सुनते हैं रात्रि 8:00।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले सायंकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्बोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत एक ही फनकार।

नमस्कार दोस्तों, एक ही फनकार के तहत हमारी आज की कलाकार हैं पार्श्व गायिका प्रीति सागर, जो मुख्य रूप से 70 और 80 के दशक के अपने सदाबहार गानों और नर्सरी राइम्स के लिए जानी जाती हैं। सन 1975 की फिल्म जूली का ये अंग्रेजी गीत माई हार्ट इज बीटिंग उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। 1978 की फिल्म मंथन का लोकगीत मेरो गाम कथा पारे उनकी बेहतरीन शास्त्रीय गायकी का उदाहरण है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो आइए आपको सुनवाते हैं प्रीति सागर का गाया जूली फिल्म का ये रोमांटिक गीत।

श्रोतो, प्रीति सागर का झुकाव कला और संगीत की ओर उनके पिता अभिनेता मोती सागर के माध्यम से हुआ। उन्होंने अपने करियर में 10,000 से अधिक विज्ञापन जिंगल्स गाए हैं। बॉलीवुड में अपनी गायकी की शुरुआत 1972 में फिल्म नगीना से की थी। हिंदी सिनेमा में कुछ समय तक सक्रिय रहने के बाद उन्होंने बच्चों के गीतों और कविताओं की दुनिया में कदम रखा। प्रीति सागर ने दूरदर्शन के साथ मिलकर फुलवारी बच्चों की नाम का एक बेहद लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम का निर्माण और एंकरिंग भी की। श्रोताओं, वे 1992 में टोक्यो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। अब जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे गाया है प्रीति सागर और यशुदास ने। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम।

0: बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रीति सागर की मधुर आवाज़ और उनके गाए गीत आज भी सुने जाते हैं और खूब पसंद भी किए जाते हैं। संगीत के प्रति उनका समर्पण और योगदान भारत के संगीत क्षेत्र के ताने बाने को एक मजबूती प्रदान करता है। वर्तमान में प्रीति सागर मुंबई में अपने पति सोमी सरन और दो बेटियों के साथ रहती हैं और अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। आज वे अपना जन्मदिन मना रही हैं। उनके जन्मदिन पर हम भी उन्हें ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।
1: तुम सुंदर हो

श्रोताओं, कथा फिल्म के इस दोगाने के साथ ही हमारा आज का एक ही फनकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हमारी आज की फनकार थी पार्श्व गायिका प्रीति सागर।

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत सदाबहार फिल्मी गीत। श्रोताओ, आज महान गीतकार और पटकथा लेखक राजेंद्र कृष्ण की जन्म जयंती है, इसलिए आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम राजेंद्र कृष्ण जी के नाम, जिन्होंने 300 से अधिक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे, फिल्म पुरस्कार विजेता गीतों के लिए जाने जाने वाले राजेंद्र कृष्ण ने कालजयी क्लासिक्स और मशहूर देशभक्ति गीतों के साथ बॉलीवुड के स्वर्ण युग को परिभाषित किया।

श्रीदेव राजेंद्र कृष्ण जी का जन्म 6 जून सन 1919 को पंजाब प्रांत के जलालपुर जट्टा गुजरात जिले में हुआ था। कम उम्र में ही उनके माता पिता का साया उठ गया और वे अपने बड़े भाई के साथ शिमला आ गए। कविता लिखने का शौक उन्हें किशोरावस्था से ही था। उन्होंने अपनी आजीविका के लिए शिमला नगर पालिका में क्लर्क की नौकरी की और साथ साथ वे मुशायरों में भी शिरकत करते रहे।

दोस्तों, शिमला में मुशायरों के दौरान मिली तारीफों ने राजेंद्र कृष्ण साहब को मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया। सन 1940 के मध्य में वे मुंबई, वर्तमान में बॉम्बे आ गए।

राजेंद्र साहब ने वर्ष 1947 में जनता फिल्म से पटकथा लेखक के रूप में शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1972 में बॉम्बे टू गोवा और 1969 की एक श्रीमान एक श्रीमती जैसी फिल्मों के संवाद भी लिखे।

श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण ने 1947 की फिल्म जंजीर से एक गीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। वे जो गीत लिखते थे उनके बोल लोगों की जुबान चढ़कर मुहावरों में बदल जाते थे और हमारे एहसासों को व्यक्त करने का हमें एक नया तरीका दे जाते थे। कभी किसी को गुमसुम खड़े हो, ज़रूर कोई बात है कहा होगा, या फिर एक चतुर नार बड़ी होशियार जुमला प्रयोग किया होगा आपने भी, या कभी अपने किसी खास को पल पल दिल के पास तुम रहती हो कहकर इम्प्रेस करने की कोशिश तो ज़रूर की होगी। ये सभी पंक्तियाँ गीतकार राजेंद्र कृष्ण के गीतों के बोल हैं।

श्रोताओं, अविभाजित भारत में जन्मे राजेंद्र कृष्ण पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस कोने में जहां हिंदी बोली और समझी जाती है उन सभी जगह पर अपने गीतों की शक्ल में मौजूद हैं और सदा रहेंगे।

श्रोताओ, राजेंद्र कृष्ण अपने आखिरी दिनों तक काम में मशगूल रहे। उन्हें लगातार काम मिलता रहा और वे काम करते रहे। काम की ऐसे जो दिलों में बस जाए और हम याद भी ना करना चाहें तो भी बरबस याद आ जाए। आज राजेंद्र कृष्ण हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमारे भीतर कहीं गहरे बसे हुए हैं, दिमाग की दीवार पर रचे हुए हैं और हमारी भाषा में घुले हुए हैं, हमारी अभिव्यक्ति में मिले हुए हैं और सदा रहेंगे।

श्रोताओं, ये था आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम गीतकार राजेंद्र कृष्ण के नाम। आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे फिल्में थी छाया, संजोग, पड़ोसन, नागिन, ब्लैकमेल, मनमौजी और नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। और अब इसी के साथ रोशनी वालिया को दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

सदाबहार फिल्मी गीत। अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, इस समय अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी सायंकालीन सभा में सायं 5 बजे पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं। अब आप हमारी द्वितीय प्रसारण सभा की शुरुआत सुनेंगे। शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता आत्मविश्वास और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता आत्मविश्वास निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले

0: पांच वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शेल्टर। इस कार्यक्रम में आज सुनिए दीवान कनवाल और शंकर उप्रेती की आवाजों में ये कुमाऊनी लोकगीत।

छुपा झुमुकी नथुली झलके छो छुप छुपा झुमुकी नथुली झलके छो रंग वाली बिछोड़ी बिंदुली चमके छो रंग वाली

0: सरपंच हैं सरडी ग्राम पंचायत के। भगत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
0: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
1: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे, और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकास खंड बगीचा जिला जसपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुँच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
0: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया, और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए, और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर

0: मोहल्ला में नुक्कड़ सभा किए, बैठे, चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है। और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गाँव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर आपकी
0: बढ़ चढ़ कर मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
0: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग नुक्कड़ सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है। उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी का बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहे अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि कुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले भी जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं, उसको हम खुद नहीं आते हैं तो हमको उस मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ

0: पर मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं,
0: सामने आ रहे हैं। और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गांव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, इसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय है, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन अच्छा। का काम है मेरा, सोमवार मंगल बुध दिन मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घर में बैठता हूँ, और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है,
1: यानी लगातार व्यस्त रहते हैं,
0: मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
1: यही कारण है कि आपके पंचायत पे पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव पे बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से उड़िया मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
1: जी,
0: चाहे जिसे कहा महिला केवाईसी वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं, और हमारे यहाँ भी

0: आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं, तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल की जिसने लाखों बेटियों के जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलाया। इस योजना का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन बालिकाओं को गुणवत्ता पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना था जो सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक कारणों से विद्यालय नहीं जा पा रही। ये योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए बनाई गई थी। दोस्तों इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक आवासीय विद्यालय यानी रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ छात्राओं को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि रहने के लिए भोजन, पुस्तकें, वर्दी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन विद्यालयों की स्थापना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में की गई जहाँ बालिका साक्षरता दर कम थी और बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल से बाहर थी। इसका उद्देश्य शिक्षा में लैंगिक असमानता को कम करना और हर बेटी को शिक्षा तक पहुंचाना था। दोस्तों ये विद्यालय सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं, यहाँ छात्राओं को कंप्लीट विकास पर ध्यान दिया जाता है। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, कंप्यूटर शिक्षा, जीवन कौशल प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कई राज्यों में

छात्राओं को कंप्यूटर और एआई जैसे आधुनिक तकनीकों की शिक्षा भी दी जाती है। साथ ही इन विद्यालयों में छात्राओं के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कई राज्यों में किशोरियों को मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण और आत्मविश्वास से जुड़ी कार्यक्रमों से भी जोड़ा जा रहा है ताकि वे जागरूक और आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केवल एक स्कूल नहीं बल्कि उन बेटियों के सपनों का घर है जिन्हें कभी शिक्षा से दूर माना जाता था। आज यही बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

0: दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के विशेष अंक खेल जगत की ओर और खेल जगत में आज हम जानेंगे एक तेज और रोमांचक खेल आइस हॉकी के बारे में जो बर्फ पर खेला जाता है। दोस्तों ये खेल खासकर सर्दियों में बहुत पॉपुलर होता है और इसे बहुत ही शारीरिक और स्ट्रेटेजिक खेल माना जाता है। माना जाता है कि आइस हॉकी की शुरुआत 19वीं सदी में कनाडा से हुई थी, हालांकि इसके कुछ रूप यूरोप में भी खेले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं इस खेल के कुछ रोचक और मज़ेदार पहलुओं को। आइस हॉकी का खेल बर्फ पर खेला जाता है जो एक आइस रिंक पर होता है। ये रिंक गोल से घिरा होता है और इसमें हर टीम के पास एक गोलकीपर होता है जो अपनी टीम के गोल को बचाता है। इस खेल में खिलाड़ियों के हाथ में हॉकी स्टिक होती है और एक गोलाकार पक होता है जो सिर्फ बर्फ पर स्लाइड करता है। खिलाड़ियों का उद्देश्य इस पक को विरोधी टीम के गोल में डालना होता है। पक का वजन सिर्फ 170 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है। आइस हॉकी का खेल 60 मिनट का होता है जिसमें 20 मिनट के पीरियड्स में होते हैं। हर पीरियड के बाद थोड़ा आराम होता है और इसके दौरान खिलाड़ी अपनी रणनीतियाँ बदल सकते हैं। आइस हॉकी की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत तेज़ गेम है। खिलाड़ी बर्फ पर तेज़ी से दौड़ते हैं, गोल करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। एक औसत मैच में खिलाड़ी लगभग 20 से 30 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। दोस्तों जब कोई खिलाड़ी एक ही मैच में 3 गोल करता है तो इसे हैट्रिक कहा जाता है और इसके बाद दर्शक अपनी हैट्स यानी टोपी को बर्फ पर फेंकते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जो इस खेल को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाती है। एक सफल आइस हॉकी टीम को न केवल अच्छे गोलकीपर और स्ट्राइकर की ज़रूरत होती है बल्कि एक अच्छा डिफेंडर भी ज़रूरी होता है जो गोल बचाने में माहिर हो। टीम वर्क इस खेल की सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों आइस हॉकी एक अद्भुत खेल है जो गति, रणनीति और शारीरिक कौशल का सही मिश्रण है। यह न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है बल्कि दर्शकों के लिए बहुत ही मनोरंजक और रोमांचक अनुभव भी देता है।
1: ये गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। आज ही के दिन वर्ष 1984 में पहली बार टेट्रिस गेम रिलीज किया गया था। दोस्तों सोवियत संघ के कंप्यूटर इंजीनियर थे एलेक्सी, जो सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस में काम करते थे। इस एकेडमी में इलेक्ट्रॉनिका 60 नाम का एक कंप्यूटर बनाया था, जिसकी टेस्टिंग की जिम्मेदारी एलेक्सी को मिली थी। एलेक्सी ने टेस्टिंग के दौरान एक गेम बनाया जिसे आज पूरी दुनिया टेट्रिस नाम से जानती है। आज ही के दिन वर्ष 1850 में लेवाई स्ट्रॉस ने पहली जीन्स बनाई थी। दोस्तों ये था हमारा आज का इतिहास। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की ओर एक गीत के साथ।

दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम। दोस्तों हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम है कांटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरे से, मायरा सुरे से, सुषमा सुरे से। दोस्तों इसी क्रम में नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, टेट्रिस गेम को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? प्रश्न एक बार फिर, टेट्रिस गेम को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411010122 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

उत्तरायण कार्यक्रम सुरनेर सब श्रोताओं के मी कृष्ण सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे ग्रामीण रोजगारक सबसे ठुल योजना मनरेगा अब नई स्वरूप में नजर उड़ लग रहे। यह एक संचालन नई तरीका करे जान लगरो। अगर हम बात करूं वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के रूप में शुरू है ये योजना, वर्ष 2010 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बढ़ी और अब केंद्र सरकार 2026 में एक जो नाम छो जो राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रख रो। सरकार ये योजना में बहुत सारे बदलाव कर रहे, बहुत सारे नई चीज में हमर जो मजदूर भाई बहन छन उन्होंने जी प्रावधान कर रही और सरकार एक एक ग्रामीण विकास और रोजगारक जो नई मॉडल छे वो बड़े रखो। तो इसमें ये जो नई योजना छे जैसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक शुरुआत में लागू करे जान छे और के कुंजे सरकार ये के जो छ लागू जो जुलाई में 1 जुलाई 2026 में जो

तरिकल लागू है जाए। और जो पुराण काम जो चल नहीं जो अधूर पड़ी हुई छिन वो काम ले में सब काम स्वतः नई योजना में सम्मिलित है जाए। और पुराण जॉब कार्ड ले तब तक मान्य रोल जब तक नई रोजगार गारंटी कार्ड जो छि जारी नहीं है जाए। जी राम जी, केवल मजदूरी आधारित योजना नहीं हो बल्कि हमार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करने वाले व्यापक मिशन ले बढ़ोत। सतो नई व्यवस्था में मिट्टी भराई और गड्ढे खोदने जस कार्य बजाय जल संरक्षण, खेत, सड़क, पुलिया, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई और आजीविका से जुड़ी जो स्थायी ढांचागत कार्य छिन उनके प्राथमिकता दी जाए। स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों के लिए वर्किंग शेड निर्माणक व्यवस्था हो या एक सबसे ठुल बदलाव रोजगार गारंटी के दिनों में करी जाए। सुधाओ, और एक खास बात यो छू कि अब जो ग्रामीण परिवार छन उनके 100 दिनक जाग में 125 दिन रोजगार मिलल और वहीं मजदूरी भुगतान 3 दिनक भीतर डीबीटी माध्यम बैंक खातों में कन्नक लक्ष्य ले रखी जरो। और ये नई प्रावधानक तहत अगर देरी है जाए भुगतान में तो उमले मुआवजा देनक ले प्रावधान जो छू वो करी जरो। तो अगर हम बात करूँ तो पुराण जो अधिनियम छी और जो नई बढ़ो इनमें कुछ व्यापक सुधार जो छे वो करी चले। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराण वाल उमें 100 दिनक छी तो इनमें बड़े भेद 125 दिन करे रहो। यह के देखा अगर हम कार्य अवधि की बात करूँ तो श्रमिकों के खेती व्यस्त मौसम में जो बखत में बुराई और कटाई ही उमें कृषि कार्य करने के लिए उपलब्ध करोने के लिए 60 दिनों के नौ वर्ग का अवधि के लिए प्रावधान छे। शेष बखत में 125 दिनक रोजगार जो छे सुनिश्चित करी जा। और यदि कार्य मांगणक 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं करी जान तो सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता ले दी जान अनिवार्य छो। भ्रष्टाचार के रोकने के लिए और ये प्रक्रिया के ऑनलाइन पारदर्शी बढ़ोने के लिए जियो रेफरेंसिंग यानी कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल निगरानी का उपयोग जिसी में करी जाए। मजदूरी भुगतान ले बखत पर मजदूरक बैंक खाते में जो जुड़ी हल उमें सिद्ध करी जाए। और ये योजना के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका मूलक गतिविधियों के अनुकूल और जलवायु अनुकूल कार्यों के में प्राथमिकता दी जाए। यानी कि अब वास्तविक रूप में जो काम हमारे जो ढांचागत बुनियादी विकास के अखिल वरुण में काम करूँ और जो हमारे विकसित भारत 2047 तक लक्ष्य छू उगले पुर करने के लिए ये योजना के माध्यम ग्रामीण स्तर पर जो हमारे ढांचागत सुविधाएँ छिन उनके वरुण में काम में करी जाए। ये एक बहुत बढ़िया बात छू कि मैं जो नई योजनाएँ छिन जो नई काम छिन उनके रखी जाए। और इनमें बजट लो जो छे हमार सरकार द्वारा इनमें बढ़ाई जरो। तो इसमें हम उम्मीद कर सकूँ कि जो हमारे जो आजीविका मिशन छू विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ये हमारे मजदूरों के लिए एक नई किरण लिखे रहा। तो कार्यक्रम में हम अगिल्ला पुत्र के बात करूँ एल आप सुनू किशन चंद्र सिराड़ी और साथियों ने गई यो गुलजू स्तुति।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: रहा खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सुधो कार्यक्रम में अगला प्रकाश सुनो माधुरी बर्थवाला गई युगड़वा लोकगीत।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: स्वागत फिर अपना कार्यक्रम उत्तरायण में। सदौ स्वच्छता ही सेवा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाला एक व्यापक जन आंदोलन छे, जैक उद्देश्य नागरिकों भी स्वच्छता के बढ़ावा दिन और स्थायी रूप में साफ सफाई आदतों के अपन जीवन का हिस्सा बढ़ूँ छे। यह अभियान स्वच्छता के राष्ट्र निर्माण और जन कल्याणक सच सेवा मानो। सुदम हम देखनु कि हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में बहुत से लोग यशन जो अपन घर में उत्पादित होने वाले कूड़े कचरे के अपने घर के पड़ोस में, दोहरक जागन में या फिर सार्वजनिक इस्तेमाल करने वाले जागन में फेंक देने, जो कि एक नक आदत छो। सरकार द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा, स्थानीय प्रशासनों द्वारा जग जग पर यथासंभव जागन में कूड़ेदान जो छो लगे रखी रख रखी। तो इसमें हम उनके अपन घर में उत्पन्न होने वाले कूड़ के वही निर्धारित स्थान में हम उनके फेंकना चाहें, क्योंकि योले एक सेवा ही छू। हम अपन भारत जी जब हम अपन देश के हम माँ कुनु, वो माँ के सच्च सेवा तब है सकी जब हम स्वच्छता के कुछ आदतों के व्यापक स्तर पर अपन जीवन में उतारू। हम देखनू कि आज हम अगर अपन पर्वतीय क्षेत्र में के बात करूँ तो हम देखनू कि हमार जो नदी छन, हमार जो नाव छन, हमार जो गाड़ गधेर छन, वो यदु हद तक प्रदूषित है गई कि हमनके उनके पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारा प्रयास करने की आवश्यकता उन्हीं वाले बखत में पड़े। और जो हमार उन्हीं वाली पीढ़ी छू, नई पीढ़ी छू, उनको हम कत्ते ले मुख नहीं देखा पूर्व हम ये नहीं कह सकूँ उन्हें कि हम तुम्हार जी इधुक जो भल जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन छ वो हम तुम्हार उपयोग के लिए छोड़ रखी। अगर यससे हमार मे बाबू ले, हमार दादा दादी लोग ले, अगर हमार लीजिए यानी कि हमारे जो पुरान पीढ़ी छी उन्होंने हमार लीजिए यससे सोची उन्हों तो हमन के साफ स्वच्छ हाव जो छ आज नसीब नहीं हुई। तो यस में हमन के विशेष रूप में जो प्रयत्न करें पड़ा कि हम कसिक अपन स्वच्छता के अपन दैनिक जीवनक आदतक हिस्से बढ़ू। सबसे पहले तो जिसके मैल अपने कहूँ कि हमके अपन जो घर कूड़ा छो उनका हम उनके निर्धारित स्थान पर फेंकन चाहे। कुछ जो समाज में जागरूकता छ वो समाज में हम ये कह सकूँ कि वो जो अपन कचड़ छ उगले अलग अलग प्रकार पर अपन घर में वो जैसे गिल कूड़ा छ उनको अलग रखनी, सूखा कूड़ा छ उनको अलग रखनी, जैविक अजैविक में उनके बांटनी। चलो हम यस नीला कर सकने तो हम यदू तो कर सकू कि अपन जो घर कचरे छो उनको हम एक निर्धारित स्थान पर फेंकू। हम देखलू कि अनायास से हम जा बेटी उनू इत उठे कत्थे के लिए हम उनके कूड़ के फेंक दूँ, जितने हम उनके खाली जाग मिली उतने के हम खेड़ दूँ। आज हम अपने पर्वतीय क्षेत्र का अगर हम बात करूँ, हम जंगलों में जानूँ तो हम उनके कहीं प्लास्टिक रैपर, कहीं प्लास्टिक बोतल, यस हम

जग जगता अपन के खेड़ी हुई हमन के मिल जानी। तो इसमें हमार जो उड़ी वाल बखत छो कहना के हमार जो जंगली जानवर छो उनके लिए वह नुकसान हो के लिए कि सोचने के हमार के खाना पे में चीज़ नहीं थी तो उनके लिए नुकसान हो। तो इसमें हमन के जो प्रयास जो है अवश्य करन चाहिए कि हम जो स्वच्छता छे उसको अपने सकू। यह के देख रहे हमारे जो नदी छन हमारे जो नाव छन उनके लिए हम कैसे साफ स्वच्छ रखू ये हमन के देखन चाहिए क्या कि हमार जो पानी उन्हीं वाल बखत में हमन के जलक जो संकट छे वो हमन के भीषण रूप में देखने वाल मिलने वाल छे। तो इसमें नदियों के जलस्तर कम होना तो यह एकमात्र कारण छे कि हम नदियों के प्रदूषित करण लग रू और नदियों जो जीवन छे उके खत्म करण लग रू। तो इसमें हमन के इनन के अवश्य बचून पड़ल। श्रोताओं यह के देख रहे हमन के जो सिंगल यूज प्लास्टिक छो वह उपयोग ने हमन के कम करना पड़ो क्योंकि हमर जो धरती में जदुक ले कूड़ा कचरे छो वह एक ठुला आबादी जो प्लास्टिक छो यह छो। तो यह एक विकल्पक तौर पर हमन के ध्यान देन पड़ल और जो थैली छन उन्हें पहले हमन के थोड़ा रोक लगन पड़े और अपन जो दैनिक जीवन छे उनमें हम जो हमर जूटक बैग छो कपड़क बैग छो थैल छो उके बाजार सामान ले जाना के लिए वो आदतों के लिए हमन के अपन दैनिक जीवन में सम्मिलित करना पड़ल। तब हमें जो स्वच्छता ही सेवा जो हमर संकल्प छू एक हम ढेर लाग रू तो एक हम भल तरीके कर सकूँ क्योंकि हमर जो नागरिक छ अगर वो स्वयं गंदगी नहीं फैलाल और न दूसरों के फैला दल तो ये हमर जो जीवन छो आसान हो। और हम उनके यो लग हम कर सकूँ कि महन में एक दिन समदानक माध्यम ले अपन आसपास में कोई जागस जा गंद छू उगल हम साफ सफाई कर सकूँ। ये में हमारे जो समुदाय के योगदान छ वो बहुत महत्वपूर्ण छ और हम उनके एक बार में पुनः आप हैं कूल कि जो हमारे दैनिक जीवन में हम सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक छ वह एक अवश्य बहिष्कार करूँ। तो श्रोता बाबू कार्यक्रम में हम आपके आगे सुनूँ महिपाल सिंह मेहता गई यो लोकगीत।

बूढ़ बुजुर्ग छिन घरक उनके हम ध्यान रखूँ, क्योंकि एक हमार संस्कार में छू हमार कि हम अपन वरिष्ठ नागरिक को न पूर्ण तरीका ध्यान रखूँ। हमको उन जुड़े जरूरत छू उस जरूरत के हम उनके पूर्ण करन चाहें, क्योंकि मैं बाप दादा दादी हमन के बहुत जो सौभाग्यशाली हूँ जो मन की उनके न इनर सानिध्य मिलो, तो इसमें उस सानिध्य के हम कसिक बरकरार रख सकूँ और लंब वक़्त तक उनर आशीर्वादों के हम अपन जीवन में सही सकूँ, यह लीजिए हम उनके प्रयास करन चाहें जो तबे होल जब हम उनर भल तरीकल ध्यान दू। ध्यान देना तात्पर्य यह छू कि उनर जो आवश्यकता है हम देखूँ कि जैसे एक बच्चे हूँ तो मैं बाप अपन बच्चा के दिन रात वो एक पिछड़ पर लाग रूनी तब उके थोड़ा ठुल ऊ हूँ, तो वही ध्यान जो छो बूढ़ बुजुर्गो यानी कि बुजुर्ग अवस्था जब है जाए उ वक़्त में हमारे जो मैं बाप छिन हमारे जो दादा दादी छिन उनके लिए वही ध्यान आवश्यकता पड़ी, तो हम उनके एक बच्चक तरीकर उन्हें ध्यान हम उनके देना चाहिए, तो तब हम उन्हें जो आशीर्वाद छे उके प्राप्त कर सकूँ। तो अब कार्यक्रम में हम अखिला बुके सुनू नैन नाथ रावल गई ये लोकगीत।

श्रोताओं, नैननाथ रावल गए ये लोग गीत दगे। आज एक उत्तरायण कार्यक्रम इत्य के संपन्न हो भूला पुदग फिर भी ढूल एला पुदगड़ी कृष्ण सिंह लटवाल की जो अनुमति। नमस्कार श्रोताओ, थोड़ी देर बाद हमारे उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र में रिले कर जल थोड़ा प्रतीक्षा करा।

0: मेरा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ योजना के तहत 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा, महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ किया। और आईएमए एसीसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कैडेट्स की शैक्षणिक उत्कृष्टता, सैन्य दक्षता और अनुशासन को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेती के साथ साथ उसकी सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रही है, ऐसे में किसानों को परिस्थितियों के अनुरूप खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड हवालबाग में कृषि विभाग की ओर से आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनके बैंक खातों में धनराशि भेज रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जब किसान और सरकार मिलकर काम करते हैं तभी योजनाएं सफल होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है और इसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ योजना के तहत 6 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने और फसलों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
4: इसके पीछे मुख्य हेतु है खेत बचाने का, मिट्टी बचाने का, हमारी जमीन बचाने का, पानी बचाने का अभियान और विशेषकर प्राकृतिक खेती की ओर लोग जाएं, जो हमारी पुरानी समय में विरासत के तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था उसको अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और सरकार के प्रयासों से आज ये काम पूरे देश के अंदर लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता लाने का काम कर रहा है और उत्तराखंड में भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पर यह अभियान शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। और सच में क्योंकि कम कीटनाशकों का उपयोग होगा, कम रसायनों का उपयोग होगा, यूरिया कम से कम जाएगी तो निश्चित रूप से जो अन्न उत्पादित होगा वो अपने आप में औषधिपूर्ण होगा। जैसे हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वज जो खेती करते थे वो अन्न भी औषधि जैसा होता है, तो ये हमको नए समय में जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान बढ़ा है उसमें जो हमारे ये पुराने दिए हुए जो मंत्र हैं, हमारी संस्कृति है, दिशा में आगे बढ़ेगी।
3: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त आज 2 दिवसीय भ्रमण पर मुनस्यारी पहुंचे। इस दौरान पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने मंदिर परिसर में लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने महिलाओं द्वारा स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का संरक्षण एवं प्रभावी विपणन ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
5: ये अवसर मिला है मुनस्यारी आने का। मैं पहले भी मुनस्यारी में आया था और मुझे मुनस्यारी पूरे

0: उत्तराखंड में सबसे सुंदर लगता है। एक तो जगह बहुत सुंदर है, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहाड़ों से, हरियाली से बहुत ही सुंदर है। और उसके अलावा जो मुनस्यारी के हर एक जो आत्मा यहाँ पर है वो अपने आप से अलग है। उनकी मेहनत, कार्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसमें बिल्कुल अलग है। मैं जब भी यहाँ मुनस्यारी के कोई भी IAS, IPS, लीगल जो अच्छा कर रहे हैं, जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। यहाँ पर कार्य करने का ढंग है वो मुनस्यारी का बिल्कुल अलग है। यहाँ की जो महिलाएं, नारी शक्ति है, यहाँ की बेटियां हैं, अपने आप से अलग है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: प्रदेश के ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर क्षेत्र के क्वीली गांव में अपने गुरु पंडित पूर्णानंद पुरोहित की जन्मस्थली पर पहुंचकर एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रारंभ हुआ यह अभियान प्रतिवर्ष हरेला पर्व की समाप्ति तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को गुरुजनों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, स्वयंसेवी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने और इसे देशव्यापी अभियान का स्वरूप देने का आह्वान किया। भारतीय सैन्य अकादमी IMA के आर्मी कैडेट कॉलेज ACC विंग के ACC 126 कोर्स के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। समारोह में कोर्स की समग्र योग्यता सूची में पहला स्थान पाने वाले WCC नवीन को थल सेना प्रमुख स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दूसरे स्थान पर रहे CCC अवनीश कुमार मिश्रा को थल सेना प्रमुख रजत पदक और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले WCQM हर्षराज को थल सेना प्रमुख कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। सेवा विषयों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने पर CQMS अमनप्रीत सिंह को सेवा प्रशिक्षण में प्रथम सम्मान दिया गया। वहीं शैक्षणिक क्षेत्र में मानविकी संकाय में CCC अवनीश कुमार मिश्रा ने प्रथम स्थान पाया। समारोह के दौरान कमांडेंट ने कैडेट्स को शपथ दिलाई। उत्तरकाशी जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश एवं जिलाधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में संचालित हो रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक 10,35,827 से अधिक श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि चारधाम यात्रा का संचालन सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग से लेकर गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम तक यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगमता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: चारधाम यात्रा कई सैकड़ों सालों से चल रही है और अब प्रशासन में राज्य सरकार और प्रशासन इसको, जिला प्रशासन अपने कंट्रोल में इसको, हम लोग चाहते हैं कि जो भी सुविधाएं दे पा रहे हैं यात्रियों को वो एक समय पे मिले, उनकी यात्रा सुखद रहे, सुरक्षित रहे और किसी भी तरह का कोई मेजर कोई दिक्कत ना आए वो हमारे ऑफिसर्स, हमारी टीम बना के वो नज़र रखते हैं। तो वर्तमान में अभी इस किसी भी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई तो, लेकिन यात्रियों ने और सभी जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इसको सराहा भी है कि जो पहले भी आए थे, पहले कभी इस यात्रा में, तो उनका ये कहना है कि इस बार व्यवस्थाएं थोड़ा व्यवस्थित थी और यात्रियों का आवागमन भी लगभग 60,000 से 65,000 पिछले साल इस अवधि में अधिक हो गए हैं। अभी भी बुकिंग के हिसाब से होटल एसोसिएशन से बात हुई थी तो उनका भी कहना है कि अभी है उनके पास बुकिंग, धीरे धीरे जून के मंथ में थोड़ा कम होना शुरू होता है लेकिन अभी व्यवस्थित तौर पर चल रहा है।
2: उत्तरकाशी जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश एवं जिला अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में संचालित हो रही, वहीं परियोजना इकाई के अधिकारी प्रताप मटूडा ने बताया कि दोनों धामों में स्वच्छता को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में वृद्धि की गई है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने मेला प्रशासन को मानसून से पहले कुंभ कार्यों को वरीयता के आधार पर पूरा करने

करने के निर्देश दिए हैं। कुंभ की तैयारियों को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां समय से पहले करनी होंगी। बैठक में हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी जिले के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेला प्रशासन, रेलवे, दूरसंचार विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ योजना के तहत 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा, महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ किया। और आईएमए एसीसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कैडेट्स की शैक्षणिक उत्कृष्टता, सैन्य दक्षता और अनुशासन को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में हरिओम शरण और नंदनी शरण के स्वरों में ये भक्ति पद है।

पहली मुख्य समाचार। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान को शुभारंभ करी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबंध सभी शिक्षक कर्मियों की संबंधता समाप्त करने का निर्देश दिए। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी का 196 पदों का वास्ता भर्ती प्रक्रिया शुरू किया। और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुसार 11 जून तक प्रदेश भर में मौसम बदलियो रहलू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का तल्ला नागपुर क्षेत्र का कुइली गांव में अपड़ा गुरु पंडित पूर्णानंद पुरोहित की जन्मस्थली पर पहुंचते एक पेड़ गुरु के नाम अभियान को शुभारंभ करी। ये अवसर पर उन बॉयल की विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रारंभ हुए यू अभियान प्रतिवर्ष हरेला पर्व की समाप्ति तय संचालित किए जालू। अभियान को उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नीच बल्कि नई पीढ़ी तें गुरुजनों का प्रति सम्मान कृतज्ञता और पर्यावरण संरक्षण का प्रति जागरूक कनु भी छ। ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रदेश का सभी पंचायत प्रतिनिधि महिला मंगल दल स्वयं सहायता समूह स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं से ई मुहिम तय जन जन तक पहुँचाण और ये देशव्यापी अभियान को स्वरूप देना को आह्वान करी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बॉयल की शिक्षा विभाग का अधीन विद्यालय कार्यालय और विभाग में संबंध सभी शिक्षक कर्मियों तय वापस अपना विद्यालयों में भेजी जालू। उन अधिकारियों तय 30 जून तक सभी प्रकार की संबंधता समाप्त करने का निर्देश दिनी। उन दूसरा कार्यालयों में तैनात शिक्षणेतर कर्मचारी का संबंधीकरण आदेश भी निरस्त करने का निर्देश दिनी। श्री रावत ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों तय शिक्षकों की संबंधता तत्काल समाप्त करिक तय तो वे विद्यालय में भेजना का निर्देश दिनी। उन बॉयल की 30 जून तय जो शिक्षक अपना मूल तैनाती स्थल पर नी लौटला तो का खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर रावत ने बोली कि अधिकांश संबंधता केवल 21 शैक्षणिक सत्र ले थे पर कई शिक्षक और कर्मचारी सालों से अपना मूल विद्यालयों से दूर कार्यरत। यहाँ से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों तय शिक्षणेतर कर्मिकों का सभी संबंधीकरण आदेश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्देश दिनी। आगामी मॉनसून सीजन का दौरान संभावित आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने का वास्ता उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने महत्वपूर्ण पहल करी। प्रदेश में चारधाम यात्रा का वास्ता संचालित प्रत्येक हेली कंपनी का द्वारा यूकाडा तय 10-10 घंटा की निशुल्क फ्लाइंग ओवर उपलब्ध कराया जाना छ जोंको उपयोग आपदा प्रबंधन राहत और बचाव कार्यों में किए जाणो। वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली

0: कंपनियों द्वारा कुल 80 घंटा को निशुल्क फ्लाइंग ओवर उपलब्ध करायू जानू छ। यो घंटों को उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का वास्ता होनू छ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देशों का अनुरूप प्रदेश में सुरक्षित और प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में युकाडा की यह पहल एक अभिनव मॉडल को रूप में उभरने छ। युकाडा का मुख्य अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताई कि यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन का साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अति प्रभावी सिद्ध होनी छ।
1: इस संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इशूज़ या एज लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शनिवार को 2 दिवसीय भ्रमण पर मुनस्यारी पहुंची। ये दौरान पुलिस का जवानों ने राज्यपाल तय गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करी। 2 दिवसीय प्रवास का दौरान राज्यपाल विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेला और क्षेत्र की विकास और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करला। साथ ही उन स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी व विभिन्न वर्गों का लोगों से संवाद कर क्षेत्रीय विकास, जनकल्याण और सीमांत क्षेत्रों से जुड़िया विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करला।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणू छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी का 196 पदों का वास्ता भर्ती प्रक्रिया शुरू करियाल। यह पदों का वास्ता 12 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होला। बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति का अनुसार नर्सिंग अधिकारी का कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति की 21, अनुसूचित जनजाति की 4, अन्य पिछड़ा वर्ग की 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 7 और सामान्य वर्ग की 153 पदों पर भर्ती होली। सेवा चयन बोर्ड स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित करी छ। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन तय बरखा को अलर्ट जारी करया। मौसम विभाग देहरादून का मुताबिक 7 जून तय प्रदेश का पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तेज बरखा हो सकती। मौसम विभाग का अनुसार ये दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चली सकती। आने वाला दिनों की बात करनी तो मौसम विज्ञान केंद्र का अनुसार 11 जून तय प्रदेश भर में मौसम बदलू रोलू।
3: 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
0: शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल कर दी हुई। 9 पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों का प्रभार में बदलाव करियाल, जबकि 5 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किए गए। आईपीएस निवेदिता कुकरेती तय कुमाऊं रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाई गई। आईपीएस जितेंद्र चौधरी तय देहरादून को यातायात पुलिस अधीक्षक बनाई। वकी कुमाऊं की आईजी रिद्धि अग्रवाल तय आईजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिनी। आईजी विमित हैं पुलिस दूरसंचार व फायर सर्विस को प्रभार दिए गए। आईजी कृष्ण कुमार वीके आईजी यातायात व जीआरपी बनाई गई। वकी पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ताकवाले तय आईजी प्रशिक्षण का साथ साथ आईजी सीआईडी बनाई गई। पौड़ी जिला का राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में बीएड प्रशिक्षुओं

उन भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को एक अद्भुत मेल को प्रदर्शन करी। ये दौरान छात्रों ने उत्तराखंडी भोज का साथ साथ पंजाबी, मराठी, दक्षिण भारतीय पकवान का साथ है विभिन्न राज्यों की परंपरागत परिधानों को प्रदर्शन कर विविध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शन करी। ये अवसर पर विद्यालय महाविद्यालय का प्राचार्य डॉक्टर डी एस नेगिन बॉयल की यन प्रकार का कार्यक्रमों से बच्चों में दूसरा राज्यों की संस्कृति, वख की सभ्यता और रीति रिवाज का विषय में प्रयोगात्मक रूप से जानकारी मिलती। उन बॉयल की यन प्रकार का कार्यक्रम भारतीय संस्कृति अनेकता की एकता मां प्रदर्शित कन वाली संस्कृति छ। भारतीय सैन्य अकादमी IMA का

0: 26 कोर्स का दीक्षांत समारोह को आयोजन वे समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला कैडेटों ते सम्मानित किए गए। समारोह में कोर्स की समग्र योग्यता सूची में पहली स्थान पाणवाला WCC नवीन ते थल सेना प्रमुख स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। दूसरा स्थान पर CCC अवनीश कुमार मिश्रा ते थल सेना प्रमुख रजत पदक और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला WCQM हर्षराज ते थल सेना प्रमुख कांस्य पदक से सम्मानित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान को शुभारंभ करी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबंध सभी शिक्षक कर्मियों की संबंधता समाप्त करने का निर्देश दिनी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी का 196 पदों का वास्ता भर्ती प्रक्रिया शुरू करयाल। और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुसार 11 जून ते प्रदेश भर में मौसम बदलियो रोलू। ये का साथ है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 106.8 MHz और प्रसार भारती अब न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। काश्तकार भाई अब सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं के मैं राजेंद्र सिंह बिस्तिक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है आप लोगों को हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम प्रायोजक सन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं कार्यक्रम में शुरुआत करूँ आज एक बात करे। श्रोताओं आज के वक्त में जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक ठूल चुनौती बन गया। कभे अत्यधिक बारिश, कभे सूखा, कभे ओलावृष्टि, तो कभे भीषण गर्मी किसानों मेहनत में भय नुकसान करने। इस वक्त में कृषि वानिकी यानी खेतन में फसलों दगाड़ पेड़ों समन्वित रोपण एक प्रभावी और टिकाऊ समाधान के रूप में समझा रहो। श्रोताओं कृषि वानिकी एक ऐसी पद्धति से जमें किसान अपन कृषि भूमि में फसलों दगाड़ दगाड़े उपयोगी वृक्ष लगोनी यो वृक्षन में फल, चारा, लकड़ी, ईंधन और अन्य उत्पाद प्राप्त हों। यह न केवल आय प्राप्त करना का अतिरिक्त शोध बढ़नी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में मदद मिले। श्रोताओं जलवायु परिवर्तन कारण बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश का प्रभाव किसानों फसलन में पड़ो। एक लीजिए खेतन में लगाई गई पेड़ तापमान के नियंत्रित करने में मदद करनी, उन्हें छाया और हरियाली, खेतों सूक्ष्म वातावरण के संतुलित बढ़ा रखनी, पेड़ों जड़ माट के लिए मजबूती प्रदान करनी और जल संरक्षण में सहायक होनी। श्रोताओं कृषि वानिकी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के अवशोषित करना प्रभावी माध्यम लगे। जब पेड़ वातावरण वे कार्बन गैस का अवशोषित करनी तो वील जलवायु परिवर्तन गति के कम करने में सहायता मिले। श्रोताओं कृषि वानिकी केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह किसानों आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई कारणवश मुख्य फसल के नुकसान है जहाँ तब खेतन में लगी पेड़ किसानों के अतिरिक्त आय प्रदान करनी। यह में फलदार पेड़, चारा दिनी वाल पेड़ और इमारती लकड़ी दिनी वाल पेड़ लंबे वक्त तक आर्थिक

0: लाभ देते रहने यह किसानों आय में स्थिरता है और जोखिम में कम हो। श्रोताओं एक अलावा कृषि वानिकी जैव विविधता के लिए बढ़ावा दें, पेड़ पक्षियों के, मधुमक्खियों के और अन्य लाभकारी जीवन का आश्रय प्रदान करें, जय कारण प्राकृतिक परागण और कीट नियंत्रण में सहायता मिले और रासायनिक दवाइयों पर निर्भरता ले कम है जाए। श्रोताओं आज आवश्यकता थी किसान भाई बहनिया के कि अपन भूमि में जलवायु और स्थानीय आवश्यकताओं अनुसार उपयुक्त प्रजाति पेड़ों का चयन करके जरूर लगाना चाहिए। पेड़ और फसलों का सही संयोजन अपना फिर अपन आय और उत्पादन दिव्यान के बढ़ाते हैं। आज बखत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में निपटना मिलेगी हमन के या उपाय अपनों वाल जो पर्यावरण और कृषि दुआ के लिए लाभकारी हो या इसमें कृषि वानिकी ही एक यश प्रभावी उपाय से जो माटो पानी जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय सबों की सुरक्षा करो। तो श्रोताओं यह तो आज एक बात आप कार्यक्रम में सुनो यह जरूरी संदेश।
1: पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
2: छोटा किसान बने देश की शान।
1: पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।
0: श्रोताओ कार्यक्रम में अब अगेन आप लोगों को सुनोनू खेती बचाओ अभियान अंतर्गत जल प्रबंधन विषय पर ग्राम धुरा संगरौली विकासखंड लमगढ़ जिला अलमाड़ा पूर्व प्रधान व वन पंचायत सरपंच श्री भुवन चंद पांडे जी दुगे राजेंद्र सिंह बिस्टे के क्षेत्र संकलित बातचीत। दौर में जलवायु परिवर्तन अनियमित वर्षा और घटते जल स्रोत आज खेती के समय ठूल चुनौती बनभेर उभर नहीं यास बखत में जल संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि खेतन को बचाना एक सशक्त उपाय है। आज यही संदर्भ में खेत बचाओ अभियान अंतर्गत जल प्रबंधन विषय पर हमारे दगाड़ क्षेत्र संकलित बातचीत में जुड़ने ही ग्राम पंचायत धुरा संगरौली विकास खंड लमगाड़ जिला अलमाड़ा पूर्व ग्राम प्रधान और वन पंचायत सरपंच श्री भुवन चंद पांडे जी। पांडे जी स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
0: सबने पहले आपको अपन संक्षिप्त परिचय देते हुए हमारे श्रोताओं को बताओ कि खेत बचाओ अभियान की छे।
3: सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, सब लोगों के नमस्कार छे। मेरा नाम छे भुवन चंद पांडे। मैं पहली ग्राम प्रधान ले दे रही हूँ और सरपंच ले दे रही हूँ वन पंचायत धुरा संगरौली।
0: अच्छा।
3: तो मेरे जनपद अल्मोड़ा ग्राम से धुरा संगरौली। तो खेत बचाओ अभियान जो छे एक जन जागरूकता अभियान छे और ये में सब लोगों का अपन अपन भागीदारी छ और एक जागरूकता आधारित यो एक पहल छ जैक उद्देश्य छ खेत के जलवायु परिवर्तन सूखा मृदा क्षण और भूमि बीमारियों वे बचौने लीजिए अनियमित वर्षा लीजिए जल संकट लीजिए इन चुनौतियों मुकाबिल करने के थी यो खेत बचाओ अभियान चले रहा जैमे मृदा संरक्षण जल संरक्षण कृषि वानिकी सिंचाई टिकाऊ कृषि और आज फल संयंत्र वृक्षारोपण आदि ये क्यों किसानों के लिए एक पहल थे और ये सब लोगों के लिए थे। अच्छा। यही से हमर खेत बचाओ अभियान।
0: अच्छा। तो पांडे जी अपूल ग्राम प्रधान और वन पंचायत सरपंच द्विवेदी पदन पर काम कर रहे हो तो आपू अपन अनुभव आधार पर बता ला कि खेती लीजिए जल प्रबंधन कतु महत्वपूर्ण है।
3: खेती लीजिए सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जल प्रबंधन बहुत जरूरी है जैसे बंधारा टैंक से हार्स पावरिंग वगैरह से चाल खाल खंती से न वृक्षारोपण से चारा प्रजाति वृक्ष से न और तो अनेक प्रकार हम अपन ये जल संरक्षण कर सकूं

0: एक व्हील हमारी जमीन के जो फायद हुआ, जो हमारी कृषि बचे, जो सूखा बखत ला हम सिंचाई कर सके, वो जल बचोना का व्हील कर सके।
1: अच्छा,
0: और हम लोगों अपन कार्यकाल में चाल खाल खंची ले बनवाई, बंधारा टैंक ले बनवाई, और वृक्षारोपण ले करा, उनमें चारा प्रजाति वृक्ष ले लगाई, और व्हील हमारी यश भा की नौलों गजारों स्रोत ले बढ़ी, और हमारे जो जमीन जो सूख ना वो बहुत दिन तक नमी रहे, जब खत हमारे सूख पड़ा वो बखत ले हमारी फसल के कोई आघात न पहुंचो।
1: अच्छा।
0: तो ये वास्ती मैं अपन पीरियड में यो काम करी, चाल खाल खंती बनवाई, बंधारा टैंक, आज लोग भी खाद उठो नहीं, वृक्षारोपण करा, उनमें चारा प्रजातियों में हमारे जानवरों ने चार ले जा, और चौड़ी पत्ती का अगर हम पेड़ लगो व्हील जल संरक्षण होल जमीन जो भूस्खलन हूँ उड़े बच जाना।
1: अच्छा, तो पांडे जी हम खेती की स्थिति बारे में जानना चाहूँ। अबू क्षेत्र में जल स्रोतों और खेती की स्थिति में पछिल वर्षा के अपेक्षा आल के बदलाव आ रो?
0: बदलाव यो से की जहाँ जहाँ हम लोग चाल खाल खंती बनाई, तो उन जगहों में हमारी फसल जो से बिल्कुल सुरक्षित छ।
1: अच्छा।
0: और भल फसल होने आए जैसे सब्जी उत्पादन वगैरह जो से जब जमीन में नमी रोड़ी तो वो फसल बिल्कुल ठीक हुए, नितर सूख पड़ गया तो सब खत्म है ना। तो व्हील हम लोगों जो आय साधन से उले बढ़ना और नई नई चीज चाख ले लेना, ताकि फसल वगैरह है गए, सब्जी उत्पादन है गए, व्हील भल है जना।
1: अच्छा, तो पांडे जी अब बात करूं जंगल और जल संबंधित, तो जंगल और जल स्रोतों आपस में की संबंध मान साहब?
0: मैं मेरा मानन यो की जंगल और जल स्रोतों जैसे माछ और पानी के संबंध से, बिना पानी के माछ नहीं रह सकन, बिना माछ पानी नहीं रह सकन। तो यो संबंध से कि जब जंगल न होलो तो पानी कहाँ पे आल, और पानी न होलो जंगल कैसी सुरक्षित होल। तो एक दूसरे एक ये किस्में कड़ी से कि बिना एक दूसरे मतलब जीवित नहीं रह सकन, न पानी जीवित रह सकन, न जंगल सुरक्षित रह सकन।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, तो ये वास्ते जंगल ले बचाने से, और जंगल अगर हमार सुरक्षित है जालो तो हमार पानी ले बच जाल, पानी बात लो नमी बनी रोल, और ले जीव जंतु जो प्राणी मात्र से उसका पलन फै जाल, उनके के परेशानी न हो, प्रकृति एक श्रृंगार होते रहो।
1: तो पांडे जी वन संरक्षण वे खेतन के और किसानन के लाभ मिलो?
0: वन संरक्षण वन होला तो वील पानी स्रोत बढ़ाल और पर्यावरण पर रोल, और दूसरा व्हील जो छो हमारे नमी रोल, और नमी रोली वहाँ बैठी हमको जो पात वगैरह मिलते रहाल, ताकि वो हमारे खादा काम आ जाए, जैविक खाद बने जो हम ये रसायन प्रयोग खेतने करने हैं, या व्हील हमारे जमीने की उर्वरा शक्ति कम है जिन्हें, और धीरे धीरे वो ऊसर रूप धारण कर लेना है। अगर हम यो पत्तियों उपयोग करूँ और गोपाल में गोबर उत्पादन करूँ, ये हमारी फसल बचल, हमार उत्पादन ले भल होल, और वील हमू के लिए कोई बीमारी न हो। अगर हम जैविक होना तो वील हमारे शरीर ले स्वस्थ रहोल, और जो उत्पन्न हमारे प्राणी मात्र जन जो हमारे जीव जंतु सन उनले सुरक्षित रहा। ये जो हम खाद उपयोग करना कई जो भाल जीव जंतु सन जो हमको फैट बुझोनी उले मरियानी। तो यो चीज से तो जब जंगल होल तब हमारी खेत ले बढ़े, और बिना जंगल के सुरक्षा हम अगिल का बढ़ नहीं सकना, हमारी खेत बाड़ी प्रभावित है जाए, असमय वर्षा हो और जमीन ले खराब हो। तो ये वास्ती प्रकृति मेल मिलाप के धरने लगी, यो जल जंगलों सुरक्षा बहुत अनिवार्य से हुई ले भी हमारी फसल बताई।
1: बिल्कुल सही बात करना। हाँ, तो पांडे जी अब बात करनू कि अपूल अपन कार्यकाल में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए के कार्य करी?
0: मैं अपन कार्यकाल में बंधारा टैंक बनवाई, और चाल खाल खंती बनवाए थे, और वृक्षारोपण करा, और नेपियर घास ले लगाए जहाँ भूस्खलन हुई के बचाने लगी जाए। तो जय बंधारा टैंक आज ले लोग अपन सब्जी उत्पादन वगैरह करना ही, और जहाँ जहाँ ले यो चाल खाल खंती वगैरह बनाई वहाँ नौलों गजालों पानी बढ़ा, जेल हमारे जमीन में पानी मिलना आज ले, और वहाँ नमी बनी से और भल फसल होना है।
1: तो आपू यो कार्यों परिणाम स्वरूप किसानों और उन्हें खेत पर ले प्रभाव पड़ने?
0: बिल्कुल साहब, यो इस किस्मत से कि जिन लोगों तो चीज अपने

0: उन आज तितु आजीविकासन अपन गोभी बेचना ही, टमाटर बेचना ही, शिमला मिर्च बेचना ही, बैगन बेचना ही, उन्हें आय बढ़ रहे और कम जमीन में जो जो तू कम क्षेत्रफल से उनमें उन ज्यादा लाभ ले नहीं। यो काम है रो उन्होंने अपन बंधारा टैंक बना वे नाने धोने ले जो यो गर्मी दिनों पानी बड़ी किल्लत है जाए वो किल्लत के लिए बताओ भरे ताकि वो जब ले बारिश में पानी कटे है के बंधारा टैंकों में या साल का अलखंजों में वो पानी जानवरों काम ले आ देना और उन्हार काम ले आ देना और सिंचाई काम ले आ देना फसल ले भले देना है तो फायदे फायदे रहो।
1: अच्छा कौन मतलब से आप द्वारा करी गई हो कार्यों आज ले किसान लोग अपन फसल पैद कर लेनी और वीक दगाड़ दगाड़े अपन आय के लिए बढ़ोनी और हमारे पर्यावरण संरक्षण लो होना और हमें जैव विविधता ले बच रहे। तो पांडे जी वर्षा जल को बचाना और भूजल स्तर को बढ़ाना ले जी ग्रामीण लोग की कर सकनी की करना चाहिए उन्होंने
0: सब है पहली उन्होंने यो करना चाहे कि जैसो हमारे खेतों जुताई से उले थोड़ा बहुत गैर करें चाहे ताकि बारिश होलो तो जमीन में पानी के सोखल और नमी तक पुजल और कती कती नी निशाव के उन्होंने एक आध खाल खंती जल बने चाहे एक आध गाल में नंग नंग मतलब एक आध जगह और वे बाद लोगों योले करना चाहे कि अपन आसपास अगर बंजर जमीन सब भी मली बड़ी चाल खाल खंती बना लें चैनी थोड़ा बहुत ताकि वो पानी के संरक्षित होला उन्हें जमीन को भी नमी मिले और वी विल फायदा हो और थोड़ा बहुत जो वृक्ष वगैरह से भी खाद हाथ खींच पे जैविक उत्पादन लोग कर सकनी उनको फायदे फायदे से
1: और कहना कहें उनके पेड़ पौधे अपना नाम जमीन में लगा चाहिए ताकि जमीन एक नमी बनी रहो
0: नमी बनी रहो।
1: तो पांडे जी अब बात करूं सामुदायिक भागीदारी तो जल संरक्षण में ग्रामीण जनता भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जल संरक्षण में बिना सामुदायिक भागीदारी के लिए नहीं सकून क्योंकि इकोले आदम की कर जब सब लोग मिल बेन समूह द्वारा या कई योजनाओं द्वारा सब लोग मिल बेन अपन अपन खेतों में अपन अपन जागों में एक प्रयोग कराल जो पेड़ पौध लगा लिया चारा प्रजाति फल लगा लिया गौ पालन कर लिया तो ये काम कर बेन यो लोग जल संरक्षण के मजबूत कर सकनी बहुत कर सकनी यह भी सब लोग जो सामूहिक रूप में काम कर ला सब जाग हो ताकि एक आदमी काम कर लो वीक पास नमी होली तो कट जाने पूजा लेकर सब लोग बोला पूर्ण क्षेत्रफल में हमारा नमी रहो और पूर्ण क्षेत्रफल में हमारे फसल भल भली और हमारे पर्यावरण भल भल हमारे जीव जंतु ले सुरक्षित रहाल हमारे जानवर ले सुरक्षित रहाल और सब प्रकार एक प्रकार भल हो बिना सामूहिक भागीदारी वो कह रखा अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इकोले आदमी क्या नहीं कर सकूँ ये बिना समूह है बिना गांव एकता क्षेत्र एकता क्या नहीं है सकूँ।
1: बिल्कुल सही बात करना पांडे जी हमन के जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता बचाई धरना के जी सामूहिक प्रयास जरूर करना चाहिए। तो पांडे जी वन पंचायत और ग्राम पंचायत मिल भेज जल संरक्षण में को प्रकार योगदान दी सकनी आला वक्त में
0: बात यो कि ग्राम पंचायत और वन पंचायत अगर ये मिल जाला उल काम हो क्योंकि ग्राम पंचायत में थोड़ा बहुत बजट हो वन पंचायत में बजट न हो यदि ग्राम पंचायत बजट कर वन पंचायत एरिया में जहाँ नौ जाग से जेट बोटी ना प्लेन लागे उल्ला चाल खाल खंती वगैरह बनाए जाल या लोगों घरों में बंधारा टैंक वगैरह बनाए जाल और जंगलों में वृक्षारोपण वगैरह है जल वन पंचायत द्वारा और सारा प्रजाति वृक्ष लग जला उल जानवरों के लिए भल भल पानी के लिए भल भल और हम सब लोग सुखी ले रहो हम आभा ले भल मिले ऑक्सीजन ले भल मिले और हमारे बहुत बीमारी ले दूर हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो पांडे जी जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों के जल प्रबंधन के लिए को बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए।
0: यो अब यो जैसे किस्मत असमय वर्षा होने जलवायु परिवर्तन होना एक लीजिए हमके समय समय पर बिल्कुल ये जो बंधारा टैंक छ चाल खाल खंती छ वृक्षारोपण छ अपन नाप जमीन में पेड़ पौध चारा प्रजाति वृक्ष लगन छ ताकि हमर जल प्रबंधन बिल्कुल सुरक्षित रह सको और देख जो असमय वर्षा होने या सूख पड़ना वही वक्त हम वही जलो प्रयोग कर सकूँ और वो नमी हमारे बरकरार रोड़ी हमारे फसल ले भाई ले सके यदि हम जल संरक्षण वगैरह न कर सक तो वो पानी बगते रहो और हमारे उपजाऊ जमीन ले बगते रहो

0: अगर उन्हें पेड़ बहुत नोहला वो जो हमें जमीन से उपजाऊ उले बिक जाए तो वही हम के फायद में मिला और हमें जमीन ले बिगड़ जाए। ये वास्ते हम के जल संरक्षण करने लीजिए सामूहिक प्रयास द्वारा हम अपन काम कर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो पांडे जी अब बात करनु खेत बचाओ अभियान है, तो खेत बचाओ अभियान के सफल बनाना लीजिए ग्रामीण लोगों के भूमिका निभान चाहे।
0: यस, एक लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि हम अपन खेती पाती बचाउन से अपन खेत बचाउन से हम अपन जल संरक्षण बचाउन से अपन वृक्षारोपण करण से और अपन आय बढ़ाउन से ये एक लिए जागरूकता करण से महिलाओं में जागरूकता करण से समूह द्वारा ले जागरूकता करण से अपन नैतिनों को बताउन से कि ये किस्मेल तुम काम करो ताकि हमारी जमीन जायदाद सुरक्षित रहो हम ये बेफायद रहो और हमारे जो यो जो संपदा से यो ले बची रहो। ये किस्मेल हम जागरूकता अभियान चलाए बेन और लोगों को बताए बेन कि ये से किस्मेल जल संबंधन है सकें सामूहिक रूप में मिल बेरन और वृक्षारोपण कर बेन घास लगा बेन चारा प्रजाति लगा बेरन तो हम अपन जमीन जायदाद जो हमारे पहाड़ एक जो मैमेंट से ये बचाउन से तो ये जागरूकता कर बेरन लोगों से यो काम ले कर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो पांडे जी खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत जल प्रबंधन करना लीजिए आपू हमारे श्रोतान के हमारे किसानन के या ग्रामीण युवाओं के की संदेश दें चाला।
0: यस, युवा जो से वो देश कवा या हमारे पहाड़े कवा या यो हमारे मैमेटिक जो से एक रीढ़ की हड्डी से अगर युवा लोग सामूहिक रूप में मिल बिन काम न करला आप बुढ़बाड़ के कर सकते हो तो और उन्हें वृद्ध है तो यो युवा लोग जब मिलाल और सामूहिक रूप से सब लोग मिलाल उमें यानी किरमोई तरान सब लोग उन लोगों से ताकि यो जल संबंधन है सको या ताल काल खंती बनन कई प्रकार वृक्षारोपण कर भी या कई अन्य प्रकार ले तो यो पानी का बचाव है सको ताकि जलवायु ठीक रहो और हम के जो दुखक समय से आपदा समय से वही वक्त हमारे यो जो करी हुई काम से यो हमारे काम लगन।
1: बिल्कुल सही बात। तो पांडे जी आपूल हमारे श्रोतान के जल जंगल और खेती के बीच गहरे संबंधों को बताते हुए जल संरक्षण एक आवश्यकता महत्वपूर्ण जानकारी दे हम उनके विश्वास कि आपू अनुभव हमारे श्रोताओं के या हमारे किसानों के जल संरक्षण और खेती बचाव लीजिए जरूर प्रेरित कराल आपूल अमूल्य समय दिवेर हम देखिए बात करे यह लीजिए आपू बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं अल्लाह आप लोगों ने सुनाए खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत जल प्रबंधन विषय पर ग्राम धुरा संगरौली विकास खंड लमगाड़ जिला अलमाड़ा पूर्व प्रधान व वन पंचायत सरपंच श्री भुवनजन पांडे जुदगेड़े राजेंद्र सिंह बिस्टे के क्षेत्र संकलित बातचीत। तो श्रोताओं कार्यक्रम में अघिनका आप लोगों के विचार बातचीत करनू और बात करनू खेत बचाओ अभियान के तहत आज हौलबाग जिला अलमाड़ में करी गई भव्य कार्यक्रम है। तो श्रोताओं जलवायु परिवर्तन चुनौतियों के बीच किसानों के भविष्य की सुरक्षित बढ़ाना का उद्देश्य हौलबाग में राज्य स्तरीय खेल बचाओ अभियान कार्यक्रम में एक भव्य आयोजन करेगा। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के देखते हुए कृषि संरक्षण माटी की उर्वरा शक्ति बढ़ाउन और किसानों के भविष्य चुनौतियों के प्रति जागरूकरण पर विशेष जोर दिएगा। माट अनाज विशेषकर मडू झोंगोरा चौलाई और अन्य पारंपरिक फसलों के संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान करेगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील अपन संबोधन में कहो कि अलमाड़े धरती पर किसानों के बीच अभेर उन्हेंगे नई ऊर्जा प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान आप केवल एक सरकार कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी में जुड़ी जन आंदोलन बन गयो। उन्होंने किसानन ने अपन कृषि भूमि माट और प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण और संकल्प लेने का आह्वान करो। श्रोताओं मुख्यमंत्री कहो कि किसान केवल अन्नदाता ही नातन बल्कि देश शक्ति और हिम्मत थी। हमें संस्कृति में माट केवल भूमि टुकड़ है बल्कि मां समान पूज नहीं थे। एक लीजिए माटे की उर्वरता शक्ति के बढ़ाई धरण और खेतों के रासायनिक पदार्थों व यथासंभव मुक्त धरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कृषि व्यवस्था छोड़न हम सबों की जिम्मेदारी से और

किसानों आय में वृद्धि करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए प्रावधान ले कर रखो। श्रोताओं, मुख्यमंत्री किसानों ने नियमित रूपल माटक परीक्षण करोन पानी के विवेकपूर्ण उपयोग करन और कृषि विशेषज्ञों सलाह और वैज्ञानिक शोध का अनुरूप खेत करना आह्वान करो। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में जलवायु परिस्थितियों अनुरूप फसलों चयन करन चाहे। श्रोताओं, मुख्यमंत्री को कि किसानों आय में वृद्धि के मामले में देश में उत्तराखंड नाम प्रथम श्रेणी में उन सरकारी नीतियों सफलता गीता जागता उदाहरण से। यह दौरान मुख्यमंत्री अलमार जनपद में तारबाड़ योजना के अंतर्गत लगभग 6 करोड़ रुपए लागत काम कराए जाने की घोषणा लग रहे। यही अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी को कि किसानों के प्राकृतिक एवं जैविक खेती के अपनाते हुए उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने लग रहे हैं और अब तक सरकारी विभाग में लगभग 30,000 है अधिक युवाओं के रोजगार उपलब्ध कराई जा चुकी हो। श्रोताओं, यही अवसर पर जिला अधिकारी अंशुल सिंगल को कि जिला प्रशासन सरकारी नीतियों और योजनाओं क्रियान्वयन लीजिए संवेदनशील से। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व में जनपद वासियों के योजनाओं लाभ दिलाई जान लगा। श्रोताओं, कार्यक्रम में ज़्यादा संख्या में किसानों, महिला समूहों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों सहभागिता करते हुए कृषि संरक्षण, माटक संवर्धन और जलवायु अनुकूल खेत के बढ़ावा दिनों संकल्प ले कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान निर्णय करेगा। तो श्रोताओं, यथी खेत बचाओ अभियान के तहत आज होलबाग जिला अलमाड़ में करी गई भव्य कार्यक्रम बारे में अब सुनो यह जरूरी संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, यही जरूरी संदेश अग्रकाल आज किसान बाड़ी कार्यक्रम का वेले समाप्त करना बखत हो। यो कार्यक्रम प्रायोजक थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आगे अंक में आप लोगों फिर भेंट हो। आज राजेंद्र सिंह बिष्ट का आज्ञा दियो। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान पानी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे
1: नमस्कार,
0: हैं।
1: आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगण में योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान शुभारंभ करो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्विदिनी भ्रमण पर मुंशारी पूजी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कार्यालयों और विभागों में संबंध सभी शिक्षक कर्मियों संबद्धता समाप्त करने का निर्देश दी और औषधि निरीक्षक बागशुरल जिल चिकित्सालय बागशुरक औषधि भंडारक औचक निरीक्षण करो। अब समाचार विस्तारल। प्रदेशक ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयागक तल्ला नागपुर क्षेत्रक कुली गांव अपन गुरु पंडित पूर्णानंद पुरोहितक जन्मस्थली पर पुंजबेर एक पेड़ गुरु के नाम अभियानक शुभारंभ करो। यह मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू है यह अभियान हर साल हरेला पर्वक समाप्ति तक संचालित करी जाल। अभियानक उद्देश्य केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं बल्कि नई पीढ़ी के गुरुजनों प्रति सम्मान कृतज्ञता और पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूक करण ले छू। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर है। यूं पदों के लिए 12 जून बटी ऑनलाइन आवेदन शुरू हाल। बोर्ड को ओर बटी जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार नर्सिंग अधिकारी कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति 4, अन्य पिछड़ा वर्गक 11, आर्थिक रूपल कमजोर वर्गक 7 और सामान्य वर्गक 153 पदों पर भर्ती है। आवेदन शुल्क जमा करनक अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित करी जा रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शनिवार हते हैं द्विदिनी भ्रमण पर मुंशारी पूजी। एक दौरान पुलिसक जवानों राज्यपाल के गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करो। द्विदिनी प्रवासक दौरान राज्यपाल विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्से लियाल और क्षेत्रक विकास और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कराल। एक दगड़ स्थानीय जनप्रतिनिधियों अधिकारियों और जनता हते हैं संवाद ले कराल।
2: मुझे अवसर मिला है मुंशियारी आने का। मैं पहले भी मुंशियारी में आया था और मुझे मुंशियारी पूरे उत्तराखंड में सबसे सुंदर लगता है। एक तो जगह बहुत सुंदर है, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहाड़ों से, हरियाली से बहुत ही सुंदर है। और उसके अलावा जो मुंशियारी के हरेक जो आत्मा यहाँ पर है वो अपने आप से अलग है। उनकी मेहनत, कार्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसमें बिल्कुल अलग है। मैं जब भी यहाँ मुंशियारी के कोई भी IAS, IPS, लीगल जो अच्छा कर रहे हैं जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। यहाँ पर कार्य करने का ढंग है वो मुंशियारी का बिल्कुल अलग है। यहाँ की जो महिलाएं नारी शक्ति है, यहाँ की बेटियाँ हैं, अपने आप से अलग है।
1: आणवाल मानसून सीजन के देखते हुए संभावित आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों हेते प्रभावी ढंगल निपटना के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडाल महत्वपूर्ण पहल कर रहे। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए संचालित हर हेली कंपनी बटी यूकाडा के 10-10 घंटक निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराई जा रही, जिनर उपयोग आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों में करी जा रो। वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियों द्वारा कुल 80 घंटक निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराई जा रही। इन घंटों का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए करी जा रो। यूकाडाक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहानल बता कि यह व्यवस्था आपदा प्रबंधनक दगड़ दगड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हो रहे। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों कार्यालयों और विभागों में संबंध सभी शिक्षक कर्मियों के वापस अपन विद्यालयों में भेजी जाल। उन्होंने अधिकारियों के 30 जून तक सभी प्रकारक संबंधता समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने दूसर कार्यालयों में तैनात शिक्षण

0: सेक्टर कर्मचारियों के संबंधीकरण आदेश लय निरस्त करने के निर्देश दी। श्री रावतल विभागीय अधिकारियों को बैठक में अधिकारियों के शिक्षकों को संबद्धता तत्काल समाप्त कर बे उनके विद्यालयों में भेजने के निर्देश दी। डॉक्टर रावतल को की अधिकांश संबद्धता केवल एक शैक्षणिक सत्र लीजी छी, लेकिन कई शिक्षक और कर्मचारी सालों बटी अपन मूल विद्यालयों बटी दूर कार्यरत छी। यह नंतिनों पढ़ाई प्रभावित हो रहे। शिक्षा मंत्री अधिकारियों के शिक्षणेतर कार्मिकों सब संबंधीकरण आदेश ले तत्काल प्रभावल निरस्त करने के निर्देश दी। विश्व पर्यावरण दिवसक मौके पर पिथौरगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर वन विभाग और 130 इको टास्क फोर्सक संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी गई। यह मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में जिला अधिकारी आशीष भंडगायल को की पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिनक विषय नहीं बल्कि हर नागरिकक सतत जिम्मेदारी छू। उन्होंने स्कूली नांतिनों हेते ज्यादा पौधरोपण जल संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण कम करण में सक्रिय भूमिका निभाणक आह्वान करो। कार्यक्रम तहत पौधरोपण करबे हरित और स्वच्छ पर्यावरण संदेश दियो।
1: पर्यावरण दिवस पे जनपद के अंतर्गत कई जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी से यही कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही साथ प्लास्टिक से भी दूर रहना चाहिए, तो इसका भी संदेश है वो प्रसारित किया जा रहा है और सबको मिलकर काम किया जाना चाहिए, सब करना चाहिए और आसपास अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तो यही संदेश दिया जा रहा है। इसी के क्रम में जनपद मुख्यालय में भी कार्यक्रम जो है फॉरेस्ट के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा और इको टास्क फोर्स जो कार्यरत है पिथौरागढ़ में उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर नैनीताल प्राणी उद्यान में पौधरोपण भाषण और नृत्य नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन करी गो। बागेश्वरम जन स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए औषधि निरीक्षक बागेश्वर पूजा रानी जिल चिकित्सालय बागेश्वरक औषधि भंडारक औचक निरीक्षण करो। निरीक्षण दौरान औषधियों का भंडारण संरक्षण और वितरण व्यवस्था गहन परीक्षण करी गो। निरीक्षण उन्होंने मन प्रभावी औषधियों के सुरक्षित रूपल तावबंद अलमारी में संग्रहित करना और अवसान अवधि पूर्ण कर चुकी औषधियों के अलग करबे सुरक्षित और तावबंद एक्सपायरी बॉक्स में रखने के निर्देश दी। यह कदगढ़ औषधि भंडार प्रभारी के औषधियों के सुरक्षित भंडारण और वितरण हेबे संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दी। भारतीय मौसम विभाग उत्तराखंड में तीन दिनों के लिए द्योक अलर्ट जारी कर रहा। मौसम विभाग देहरादून के मुताबिक 7 जून तक प्रदेशक पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तेज द्यो है सकू। मौसम विभाग के अनुसार यो दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज पवन ले चल सकी।
2: 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
0: हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित एक कंपनी के स्टोरूम भीषण आग लगनल स्टोरूम शे रही द्वि कर्मचारियों दम घुटनल और जलबेर मौत हो गई। देर रात तक मौके पर दमकल और पुलिस फोर्स तैनात रहे। जानकारी के अनुसार बे देर रात करीब 11:30 बजे स्टोरूम आग लग गई। सूचना पर दमकलक दगड़े SP सिटी दलबलक दगड़ मौके पर पहुंची और आग बुझाई गो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आए सुनो। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियानक शुभारंभ करो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्विदिनी भ्रमण पर मुंशारी पूजी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक कर्मियों को संबद्धता समाप्त करने का निर्देश दी और औषधि निरीक्षक बागेश्वरल जिल चिकित्सालय बागेश्वरक औषधि भंडारक औचक निरीक्षण करो। एक तगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती अब न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं

फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म का नाम है जीना सिर्फ मेरे लिए। समीर का लिखा गीत है और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, किनारा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गुलजार का लिखा गीत था और धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने। इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले गीत गज़लों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जमील मुजाहिद का कलाम, स्वर है पंकज उदास का।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सरस। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जमील मुजाहिद का कलाम, स्वर है पंकज उदास का।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
4: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
6: श्रोतो, आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए आप सुनते हैं कैफी आजमी का कलाम, स्वर है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता। सविता श्री भास्कर ने भी महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया। केएल राहुल और कप्तान गिल के शतक से पहले टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान। श्रेयस अय्यर होंगे टीम के नए कप्तान। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला माया च्वालिन्स्का और मीरा एंड्रीवा के बीच जारी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली होंगे आमने सामने। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने जापान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच जारी।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माइंड गेम शतरंज से, जहां प्रज्ञानंदा और सविता श्री भास्कर ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वे इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार है कि किसी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर प्रज्ञानंदा को बधाई दी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: शह और मात के खेल में कल 10वें और आखिरी राउंड में प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम किया। सफेद मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञानंदा ने बीच के गेम में कीमर की कुछ गलतियों का फायदा उठाकर 45वीं चाल में जीत हासिल की और टूर्नामेंट को 5 जीत 2 हार और 2 ड्रॉ से 18 पॉइंट्स के साथ खत्म किया। उनके दोनों ड्रॉ मैचों का फैसला आर्मागेडन गेम में हुआ, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। दुनिया के पूर्व नंबर 4 खिलाड़ी वेस्ली ने आखिरी राउंड में अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट को 17 अंकों के साथ समाप्त किया। उनके खाते में 2 जीत और 8 ड्रॉ रहे, जिनमें से 6 आर्मागेडन मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की। 10वें राउंड में वेस्ली सो ने 1.5 अंक जुटाए, जबकि फिरोजा सिर्फ 1 ही अंक हासिल कर सके। अलीरेजा फिरोजा 15.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो इस टूर्नामेंट में 2 बार आर प्रज्ञानंदा से हार गए, 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 3 मैच जीते 4 हारे और 3 ड्रॉ खेले। कीमर 11 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर रहे, जबकि भारत के मौजूदा क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश 1 जीत 5 हार और 4 ड्रॉ से 8 पॉइंट्स के साथ 6ठे और आखिरी स्थान पर रहे। फाइनल में सबका ध्यान प्रज्ञानंदा पर था, क्योंकि वो ओवरनाइट लीडर वेस्ली सो से आधा पॉइंट पीछे थे। वेस्ली सो के फिरोजा के साथ शुरुआती ड्रॉ पर सहमत होने के बाद वो आगे निकल गए। उन्होंने बीच के गेम में मिली बढ़त को कीमर पर एक शानदार जीत में बदल दिया। उन्होंने नॉर्वे चेस में शानदार खेल दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। 6ठे राउंड के बाद प्रज्ञानंदा अंक तालिका में 6ठे और आखिरी स्थान पर थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने लगातार 4 मुकाबले जीतकर शानदार वापसी की और इस दौरान उन्होंने मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया और अंतिम से पहले वाले राउंड में अपने हमवतन डी गुकेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की। इन जीतों के बूते वो खिताब की दौड़ में शामिल हुए। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार था कि किसी भी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया हो। मैच के बाद प्रज्ञानंदा ने फाइनल के अपने अनुभव को साझा किया।
2: Yeah, I'm very happy. I didn't expect it when I lost 2 games in a row, but I think I was also playing with a lot of control in the last 4 games and I mean things are also just going my way, so

0: Obviously, very happy. Didn't do anything special, but I mean, the one main thing is that just to keep some time in reserve and not get down to seconds, because yeah, it's basically like tossing a coin when you're down to seconds. So that's something I improved in my play. Like I was playing a little bit faster. I was having time advantage in almost all like the four games. And then, I mean, I think overall my quality was good throughout the tournament. I was getting good positions even in the first half, but I was just not converting them. So once I started to have some time, I think it started to go my way.
1: World number one Magnus Carlsen ne maujooda world champion D. Gukesh ko hara kar apne gharelu tournament ko jeet ke saath khatm kiya. Munish Sharma, Sports Center.
2: उधर 19 वर्षीय सविता श्रेय भास्कर ने मंगोलिया के उलान बतूर में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2027 फिडे महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सविता ने अफरुजा खमदमोवा को फाइनल मुकाबले में हराया। और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। सुनते हैं मैच के पहले दिन कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।

0: महाराजा यादवेंद्र महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने पहले दिन खेल की समाप्ति तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में 41 के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल 5 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन जोड़कर भारतीय टीम को 180 के स्कोर तक पहुंचाया। सुदर्शन ने 104 गेंद में 13 चौकों की मदद से 81 रन टीम के खाते में जोड़े। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली। कप्तान ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर स्कोर 247 तक पहुंचा दिया। केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली।
1: And that could be it. It will be it. Tucked into the gap. It's not going to go for 4, but they're going to jog through for the brace. Brings up century number 12 in Test cricket.
0: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और दिन के खेल की समाप्ति से पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। खेल खत्म होने तक गिल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 148 गेंद में 121 रन की अटूट साझेदारी हो चुकी है। गिल 143 गेंद में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 103 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं।
1: He's been a class act as a skipper. He's been extremely consistent. The 11th century for Captain Shubman Gill.
0: पंत ने भी 70 गेंद में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 50 रन बना लिए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस बीच बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं तिलक वर्मा उपकप्तान टीम के होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।
0: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही आईपीएल में जबरदस्त और विस्फोटक प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत की प्लेइंग 11 में जगह पक्की होने से अब वैभव के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर टीम की ओर से खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का शानदार मौका होगा। महिलाओं में शेफाली वर्मा के नाम ये रिकॉर्ड है। भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स में ये रिकॉर्ड अगर हम इस समय बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 206 दिन की उम्र में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। वैभव के साथ साथ हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की भी टीम में वापसी हुई है। प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीम में जगह दी गई है, हालांकि उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्य कुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है। ये थोड़ी बात निराशाजनक जरूर है सूर्य कुमार यादव के लिए। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है। वहीं ईशान किशन और शिवम दुबे की बात करें तो उन्हें भी टीम में जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे। उधर एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को रखा गया है, हालांकि एशियन गेम्स के लिए मोहम्मद सिराज टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। जी प्रशांत।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। अहमदाबाद में खेली जा रही वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में आज भारत के रोहन तायडे ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल कॉम्पिटिशन में यह कामयाबी हासिल की। मेडल जीतने के बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।
4: नमस्ते, मेरा नाम रोहन सुनील ताइडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने जो आर्टिस्टिक सिंगल किया उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो मेरे घर पे बहुत ट्रेनिंग की थी पर जो कैंप में मैंने एक महीना ट्रेनिंग की उससे भी बहुत मेरे को कुछ सीखने को मिला।
3: भारत ने इस वर्ल्ड क्लास योग कॉम्पिटिशन में 6 गोल्ड समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। कल भारत की सब जूनियर लड़कों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था, जबकि भारत की जूनियर लड़कियों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने भी नेपाल को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने मेडल टेबल में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखी है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी अहमदाबाद।
2: और अब बात फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब मीरा एंड्रीवा ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में मीरा ने माया च्वालिन्स्का को 6-3, 6-2 से हराया। उधर पुरुष सिंगल्स में भी कल फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली आमने सामने होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के पास अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतने का सुनहरा अवसर है। ज्वेरेव और कोबोली के बीच फाइनल रोमांचक होने की उम्मीद है। ज्वेरेव एटीपी हेड टू हेड सीरीज में कोबोली से 3-1 से आगे हैं। वे पिछले साल रोलिंग एरो में तीसरे राउंड में खेले थे, जब ज्वेरेव ने 6-2, 7-6, 6-1 से जीत हासिल की थी। 29 साल के ज्वेरेव का बड़े टूर्नामेंटों में शानदार रिकॉर्ड है। वे 2020 US ओपन और पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप रहे और 2024 में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने में सिर्फ एक सेट दूर रह गए। वहीं ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि कोबोली को मैटियो अर्नाल्डी की बीमारी की वजह से मैच से हटने से फाइनल का टिकट मिला। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में चेक स्टार जैकब मेंसिक को 4 सेट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। 3 घंटे 1 मिनट चले मैच में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को पेरिस के कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। ज्वेरेव दूसरी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स के।
2: और अब बात फुटबॉल की। गोवा के मडगांव में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत ने इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6th खिताब अपने नाम किया है। और अब बात हॉकी की। जापान के काकामिगहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए, कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। वहीं अंडर 18 लड़कियों की भारतीय टीम ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में कोरिया को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ शूटआउट में मिली करीबी हार से वापसी करने के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले 2 मिनट में ही बढ़त बना ली। संदीपा कुमारी ने दूसरे मिनट में गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान

0: पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सावन कुमार का लिखा गीत। धुन तैयार की है उषा खन्ना ने, गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने, और फिल्म का नाम है लैला।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने को हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की, आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था?

0: आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है। गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुँचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका इंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक ज़माना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज़्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में ख़त्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लिए उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो

0: से फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा, तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
0: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मज़ेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो, मैंने कहा लिखने के, उसने कहा यार तुम लिखते हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी, तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है कौन छापेगा क्या करेगा, तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी, उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा, जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आके मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने, तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भैया क्या कहने वाले, मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का हमें हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम नहीं छापेंगे, तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए, हाँ उसने मुझसे कहा अब दे दो फिर से देते हैं, तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ, यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा, फिर वो मरे मन से वहाँ पहुँचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीज़ें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम, अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं, जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीज़ें देखो, तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता, क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ एक मनुष्य हूँ एक खास समाज में रहता हूँ उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी वो आती हैं, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीज़ों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे, तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है जो अन्याय है जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीज़ें मुझे प्रेरित करते रहे देखते रहे, तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने, क्या ना जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है, आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सकता है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीज़ों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविज़न, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं,
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट। और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा, ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।

0: जी,
1: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
0: शब्द चित्र
1: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए, और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
0: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
1: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
0: जी।
1: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
0: जी।
1: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है
0: जी, जी।
1: तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
0: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
1: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
0: जी।
1: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
0: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
1: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हूं
0: जी,
1: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
0: जी,
1: और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया
0: जी,
1: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी वाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
0: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर, और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
1: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं, अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तेक्निशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुली से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशाळकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशाळकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन

0: कैलाश कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इंटू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इंटू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rushikesh Gangurde Akashwani ke A shreni ke gayak kalakar hai. Unki gayaki mein sangeet ka saundarya, bhavyata aur madhurya jhalakta hai, jo seedhe shrotaon ke man ko chhu leta hai. Aur yahi unke gayaki ki visheshta hai. गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुति बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: यह था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गंगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गंगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा with a drut composition in teen taal.

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत

0: के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes